ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के

0: दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य का जीवन अनेक संबंधों से जुड़ा होता है। कुछ संबंध जन्म के साथ मिलते हैं, कुछ समय के साथ बनते हैं, किंतु एक संबंध ऐसा है जो जन्म से पहले भी हमारा होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है। वह संबंध है अपनी मातृभूमि से, जिस धरती ने हमें चलना सिखाया, जिस आकाश ने हमें सपने दिए, जिस संस्कृति ने जीवन के मूल्य सिखाए। उसके प्रति कृतज्ञ होना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। देश प्रेम केवल उत्सव का विषय नहीं, यह उत्तरदायित्व का भाव है। जब कोई नागरिक ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, जब कोई शिक्षक ज्ञान का दीप जलाता है, जब कोई किसान धरती को अन्न से भर देता है, जब कोई सैनिक सीमा पर अडिग खड़ा रहता है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। भारत की महानता केवल उसके इतिहास में नहीं, उसके उन करोड़ों लोगों में है जो प्रतिदिन अपने कर्मों से राष्ट्र निर्माण करते हैं।

हम प्रतिदिन अनेक इच्छाओं और योजनाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत कम अवसरों पर यह सोचते हैं कि स्वयं जीवन कितना बड़ा उपहार है। हर सुबह का सूर्योदय, हर श्वास, हर नया अवसर ईश्वर की मौन कृपा का संकेत है। जो व्यक्ति जीवन को अधिकार नहीं अनुग्रह समझता है, उसके भीतर कृतज्ञता का जन्म होता है, और जहां कृतज्ञता होती है वहीं भक्ति का फूल खिलता है।

जीवन में कुछ बातें हमारी इच्छा के अनुरूप होती है और कुछ नहीं होती। यहीं से संघर्ष का प्रारंभ होता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ पूरा प्रयास करने के बाद फल को ईश्वर पर छोड़ देना है। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने का मार्ग स्वयं नहीं बनाती, वह बहती है और मार्ग बनता जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो जीवन का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है।

बसे। यदि कोई पूछे कि ईश्वर कहाँ है, तो शायद सबसे सुंदर उत्तर होगा, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां करुणा है वहां ईश्वर है, जहां क्षमा है वहां ईश्वर है। हम जब किसी दुखी व्यक्ति का हाथ थामते हैं, जब किसी निराश मन को आशा देते हैं, जब किसी के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं, तभी ईश्वर

याद रखिए, भक्ति जीवन से अलग कोई कार्य नहीं है। भक्ति ही वह दृष्टि है जो जीवन को पवित्र बना देती है। जब मन में श्रद्धा हो, वाणी में मधुरता हो, कर्मों में करुणा हो और हृदय में ईश्वर का स्मरण हो, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। इसी मंगल कामना के साथ ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज का चिंतन। विषय है ध्यान।

ध्यान का महत्व। वैसे सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ध्यान मतलब किसी विशेष बात, घटना या विचार को याद करने की कोशिश करना, और वह भी एकदम शांत व स्थिर मन से। आज हम हमारी दिनचर्या में आए दिन जिंदगी में देखते हैं कि भागदौड़ बहुत बढ़ सी गई है। हम और आप बस अपनी दुनिया को संभालने संवारने में जुटे हुए हैं, और ये सब सिर्फ बाहरी दुनिया है जिसके चक्कर में हम व्यस्त हुए बैठे हैं, और इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने अंदर की दुनिया को जैसे भूल ही गए हैं, बिल्कुल अनदेखा सा कर दिया है। तो ध्यान मात्र आत्मिक शांति को संतुलित करने के लिए प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ये हमें अपने आप से जुड़ने और अपनी अंदरूनी दुनिया को जानने और समझने का भी जरिया है। ये भी एक विज्ञान है जो हमें अपने अस्तित्व को, उसके अर्थ को समझने में मदद करता है। वैसे देखा जाए तो हमारे मन में हजारों लाखों विचार अशांत समुद्र की भांति हिलोरे मारते रहते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये लहरें, ये तरंगे शांत हो जाती है। हमारा मन शांत व एकाग्र हो जाता है और हमें हमारे उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः हमारा पूरा ध्यान कई तरह की घटनाओं,

विचारों और बातों में ही उलझा रहता है। और तो और, ज्यादातर भविष्य को लेकर भी बहुत सारे विचार दिमाग को उलझाए रखते हैं। तभी ध्यान हमें इन सब बातों से बाहर निकालकर वस्तुतः वर्तमान में एकदम शून्य पर स्थिर कर देता है। नतीजा, हमारा एकाग्र चित्त कार्य की दक्षता को बेहतर कर देता है और हमें फलदायी परिणाम मिलते हैं। वास्तव में ध्यान से हमारे शरीर में नकारात्मक हार्मोन्स का स्तर कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारे मन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को एक आराम की स्थिति प्राप्त होती है। व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस करता है। हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी व्याधि, रोग या दोष से युक्त हैं। कारण है मन में नकारात्मकता, कार्य के प्रति उदासीनता और अनियमित खान पान। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो मन शांत हो जाता है, दिमाग बेहतर सोचने समझने लगता है, शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और रोग व्याधि धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। शरीर स्वस्थ हो जाता है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है और अच्छे विचारों का प्रस्फुटन होने लगता है और व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है। ध्यान एक ऐसा वट वृक्ष है जो बहुत सारे लाभ और सकारात्मक प्रतिफल प्रदान करता है। ध्यान से ही हमें अपनी हर अच्छी बुरी आदतों, कार्य करने की पद्धति और लोक व्यवहार का आभास होता है और फिर हम उन पर सटीक सुधार करके और बेहतर इंसान के रूप में दिखाई देने लगते हैं। वैसे ध्यान का अर्थ है कि आप विचार शून्य हो जाएं और सिर्फ अपने हिसाब से अवलोकन करें और विचारों को अपने पर हावी न होने दें, बल्कि अपने हिसाब से विचार तैयार कर उनको कार्य में परिणित होने दें। ध्यान एक जीवन शैली है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, अपने कार्य करते हैं, वैसे ही ध्यान को हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। मन की शांति की ओर, एकाग्र चित्त की ओर, स्वस्थ शरीर और बेहतर व्यक्तित्व की ओर।

मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। इसी विषय पर केंद्रित आज का चिंतन आपने सुना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इसमें आज आप जानेंगे रागी यानी फिंगर मिलेट की बुवाई के बारे में जानकारी। तो आइए सुनते हैं खेती की बातें।
1: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करांगा रागी का बारे में। रागी यानी कि फिंगर मिलेट। रागी भारत का पूरा क्षेत्र में जहाँ की अलग अलग जलवायु छे सभी जगह एक ही खेती अनाज न चारा का रूप में पहला बहुत बड़ा पैमाना पर होती थी। पर पिछला कुछ समय से अपन देखी रहा है कि लोग ना मोटा अनाज का लगावनो जमासी बंद करियो थो तमासी रागी की फसल में भी थोड़ा सो कमी आई गई थी। पर अमा समय आई गोज कि रागी की फसल का भी अपनी मुख्य फसल का साथ अपन शामिल करा। रागी फसल ऐसी फसल छे जिकी कम आदान की आवश्यकता पड़े, एक ज्यादा कई देना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक साथ साथ रागी की फसल ऐसी फसल छे कि एका में कीट न रोग न का प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रह, एका कारण ई कीट न रोग न सी कम प्रभावित होज। 90 से 120 दिन में पकी न तैयार हुई न खेत से बाहर आई जाए। रागी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65 से 75% तक रज, वहाँ जे कम 8% प्रोटीन की मात्रा भी रज, न एक साथ साथ आहारीय रेशा न की मात्रा भी 15 से 20% तक रज। एक ई संपूर्ण पोषण कवाज। रागी का दाना भंडारण का समय भी कीट न कारण उच्च प्रतिरोधक रज। एक पौधा की बात करा तो रागी एक छोटी अवधि वालो पौधो रज जेखा की धूप की आवश्यकता कम रज। मतलब अपने खा समझा कि 30 से 40 डिग्री को तापमान यदि होएगा तब भी रागी हुई सके, पर यदि तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड तक रहेगा, 20 से 25 सेंटीग्रेड तक का तापमान रहेगा वो कम अभी ये अच्छा तरीका से उगी जाए। बुआई का समय की बात करा तो मानसून का शुरुआत में बुआई करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रज किसान भाई बहन का लेना। मिट्टी का कसी होनी चाहिए रागी का लेना। तो भाई बहनों अब तो ये बात बहुत अच्छा तरीका से समझने की छे कि सभी फसल न का लेना मिट्टी अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए, ओका में अच्छी हवा जाए, उर्वरकता अच्छी होए, कार्बनिक पदार्थ भरपूर होए, जल धारण क्षमता अच्छी होए, तो ऐसी मिट्टी रागी का साथ साथ सभी फसल न का लेना बहुत उपयुक्त रह। खेत में जमा रागी की फसल का लगावज जमा कतार से कतार की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर न पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर का बीच में होनी चाहिए। जब बीज की वावनी करेगा तब बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर लगावेगा तो सही समय पर ओको अंकुरण हुई सके। रागी में बीज न की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का अनुसार रज। रागी में फसल उगावना का समय ओका कसो पोषण चाहिए एका बारे में यदि बात करा तो देखो गोबर की खाद अपन तो कह सकें कि भाई गोबर की खाद खेत का लेना आवश्यक छे, पर किसान भाई बहन का पास उपलब्ध हो तो, क्योंकि अभी अपन देख ही रहा है कि पशुधन कम होते जाए रोज, तो ऐसी स्थिति में गोबर की खाद लोग नखा समय पर मिलती नहीं है। तो जितनी भी आपका पास छे उपयुक्त मात्रा में तो आप ओखा अपना खेत में नाखी सको। एक साथ साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस न 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का हिसाब से रागी की फसल का लेना अनुशंसित छे। रागी की फसल में निंदाई करनु बहुत आवश्यक, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जब भी कोई भी बीज की वावनी हो तो का साथ साथ जी खेत में पड़ेल पहला बीज रजनी वो भी उगी आवज, तो वो अपना मुख्य फसल का पोषक तत्व लाई रहे ओकासी अपनी पैदावार में कमी आई जाए, तो ऐसी स्थिति में निंदाई आवश्यक छे। जी भी कचरो उंगी आयो हो कम से कम 20 से 21 दिन का बाद ओका एक बार अच्छा तरीका से हाथ से निकाले ना खेत से बाहर कर दियो, या असो हो सके कि ओका अपना खेत में एक जगह इकट्ठो कर दियो या अपनी जमीन जहाँ खाली पड़ेल छे नी वहाँ ओका पर नाखी सकाज। हमारा बहुत सारा भाई बहन खरपतवार नाशीनों को उपयोग कर रहा है, तो उनका लेना ये सलाह छे कि आप प्रयास करो कि आपको खरपतवार नाशी को उपयोग कम करनु पड़ा। आप हाथ से निंदाई करोगा या हाथ से चलने वाली मशीन का माध्यम से निंदाई करोगा तो वो अपनी मिट्टी का लेना भी अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य का लेना न जब उन्हीं रागी का लोग खावेगा तो उनका स्वास्थ्य का लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कीटनाशक न को न खरपतवार नाशक न को उपयोग कम से कम करने की सलाह हमारा किसान भाई बहन का लेना रज। तो यदि इन्हीं बात न को ध्यान हमारा किसान भाई बहन न रखी लियो तो रागी की उपज में उनका दाना की उपज लगभग 25 से 30 क्विंटल का आसपास मिली जाए, नहीं का साथ साथ पुआल भी 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का अनुसार उनका मिली जाए, तो ये भी लाभ उनका होज। आज हमारो किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। इसके अंतर्गत आज आपने जाना रागी की बुवाई यानी फिंगर मिलेट की बुवाई कैसे की जाए। प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं अनुराधा मराठे।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है,

प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानी हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग, कलाकार थी अनुराधा मराठे, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण में सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा होगी, विषय होगा स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग। प्रस्तुतकर्ता होंगी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सवेरे 8:30 पर। मराठी कार्यक्रम होगा सवेरे 9:00। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और सरकार के 12 वर्ष, इन दोनों विषयों पर चर्चा होगी। मुलाकात के तहत कथावाचक श्री विजय कृष्ण भागवत से श्रीमद् भागवत कथा महत्व, इस विषय पर बातचीत की जाएगी। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा सवेरे 9:30 का। अरुण मोरोने का सितार वादन सुनवाएंगे राग पूरिया कल्याण में।

आपकी पसंद के गीतों पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन होगा सवेरे 10:05 से 11 बजे तक। श्रोता अगर इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लें 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। समय सवेरे 10:05 से 11 बजे तक एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी होगा 5 बजे। आरंभिक चर्चा होगी और आज का क्रम के तहत कुछ बातें कुछ गीत आपको सुनवाएंगे। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। संध्या 6 बजे का समय रहेगा एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम का। 6:30 पर सुगम संगीत में सुनिएगा आनंद कुमार को।

6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे। हमेशा की तरह संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज की बात होगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर। तनुजा चौबे की कहानी सुनवाएंगे आशियाना। घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन जैसे क्रम भी होंगे। रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:16 पर सुनिएगा चित्रगीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रिले होगा रात्रि 9:30।

0: श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा आज रात 10 बजे। रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भुवनेश कोमकली का गाया राग शिव केदार सुनवाएंगे। और श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, आकाशवाणी इंदौर। अब आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर और गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी सुन सकते हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। समाचार पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में रिले होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 50वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृत्व

0: नाम यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिक रूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुत विकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागं अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेश मन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेष सूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेश सचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गौतम बुद्ध नगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमान सेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 दिनांके अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26-2000 वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
10: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: अपनी सुबह कीजिए सुहानी गुड मॉर्निंग इंदौर के साथ
1: प्रत्येक सोमवार को सुबह 7:20 पर आकाशवाणी इंदौर से और सुबह 10 विविध भारती इंदौर से जरूर सुनिए
2: गुड मॉर्निंग इंदौर।
3: श्रोताओं हम आपको याद दिला दें कि आज सवेरे 10:05 से 11 तक आप सुनेंगे MH हॉटलाइन कार्यक्रम। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 10 और सुबह सवेरे 8:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत में कुछ मजेदार बातें और गीत। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है।
1: बेरखेड़ी जैतून ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उस पर भी यहाँ काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं इस पर भी यह काम होगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
3: सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा। स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
4: पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पर आमदनी कम थी। गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना लें।
3: अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
5: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे। और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुनिए चर्चा, विषय रहेगा स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग। प्रस्तुतकर्ता दुर्गेश नंदिनी चौधरी।

सच श्रोताओं, इस भागम भाग वाली जिंदगी में स्वयं के लिए कुछ पल चुराना मुश्किल है, लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी से करते हैं प्यार तो खुद के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ, कुछ पल योग और ध्यान के लिए।

श्रोताओं, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम्, यानी अपने कार्यों को पूरी कुशलता और संतुलन के साथ करना ही योग है। तो फिर देर किस बात की, शुभारंभ आज से ही कर दें।

श्रोताओं, हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका उद्देश्य मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, जिसमें मन, शरीर और आत्मा की तंदुरुस्ती शामिल है। ये हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है और हमें शांत रखता है। ये एक प्राचीन भारतीय विद्या है। योग का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का मिलन।

0: श्रोताओं, हमारी बातों से, गीतों से तो आप समझ ही चुके हैं। जी हाँ, ठीक पहचाना। आज गुड मॉर्निंग इंदौर का विषय है स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग। श्रोताओं, इस वक्त हम शहर के प्रतिष्ठित योग केंद्र में हैं और हमारे साथ हैं पल्लवी जी और आशिमा जी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम में इनका स्वागत और बातचीत का शुभारम्भ। आशिमा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: आशिमा, हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बार आप हमारे साथ बोले गुड मॉर्निंग इंदौर। क्या बात है श्रोताओं, गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है। और अब हम आशिमा से बात करते हैं। आशिमा, ये बताइए कि आप योग कब से कर रही हैं? हमारे श्रोताओं को अपनी योग से संबंधित जो भी जानकारी है अपने विषय में जानकारी दें, बताएं प्लीज।
1: थैंक यू सो मच मैम मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात इस मंच पे साझा कर सकूं। मैम, योग से मेरा रिलेशन काफी सालों से है। जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी कॉलेज की, तो तब से मैं योग करती आ रही थी। कभी बीच में गैप हो जाता था, कभी करने लगती थी। उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम फिर जॉब की, तो मुझे उसमें थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, तो मुझे कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। तब मुझे फिर से योग का रास्ता मिला। और उसमें जब मैं वापस से करने लगी, योग करने लगी, ध्यान करने लगी, तब मुझे वापस से अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है, और मैं जैसे भी मेंटली अगर परेशान थी, फिजिकली परेशान थी, तो मुझे उसमें काफी राहत दिखने लगी। इस तरीके से मेरा योग की तरफ फिर से रुझान
0: हुआ। बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइज हुआ कि मुझे योग की तरफ जाना चाहिए और अपने आप को फिर से ऊर्जावान बनाना है। कुल मिलाकर आपको उससे अच्छा फायदा भी पहुंचा। बहुत अच्छी बात है कि आपने योग की तरफ रुख किया और उससे आपको लाभ भी हुआ। अब ये बताइए कि अभी आप फिलहाल क्या कर रही हैं?
1: मैम, अभी फिर मैं योग की तरफ रुझान होने के बाद मैं मास्टर्स कर रही हूँ, योगा में ही।
0: बहुत अच्छी बात है आशिमा कि पढ़ाई में भी आपने योग को शामिल कर लिया है। अच्छा, ये बताइए कि 21 तारीख की क्या तैयारी? 21 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं क्या उस दिन कुछ खास करने वाली हैं?
1: जी मैम, बिल्कुल जरूर। जैसे कि 21 जून को हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसकी तैयारियां अभी से चालू हो चुकी हैं और बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज में अलग अलग शिविर लगने वाले हैं, कैंप लगने वाले हैं। तो उसमें किसी भी उम्र का कोई भी इंसान आ सकता है, वृद्धजन आ सकते हैं, बच्चे और कामगाची महिलाएं, और हर कोई आके उसका लाभ उठा सकता है। और मैं युवा पीढ़ी से भी ये दरख्वास्त करूंगी कि उन्हें जरूर से आके इन मुफ्त शिविरों का लाभ उठाना चाहिए और योग और ध्यान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। एक विशेष बात मैं आपको और ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो योग सेंटर है, वहां पर भी 21 जून के दिन रंगारंग कार्यक्रम होंगे। दिन भर अलग अलग आसन कराए जाएंगे जिसके फायदे लोग उठा सकते हैं, और पूरा दिन भर बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मेंटेन्ड होगा। और मैम, एक विशेष बात ये भी है कि हमारे सेंटर पर जो भी रंगारंग कार्यक्रम होंगे, तो वो सारे योग आसन वगैरह हम लोग म्यूजिक के साथ और संगीत के साथ प्रस्तुति देंगे।
0: क्या बात है आशिमा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करने वाले। अब ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: क्योंकि मैम हम अब योगा और मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा गीत है अवतार मूवी का, तो वो इससे काफी रिलेट करेगा। यारो उठो भागो, ये सॉन्ग अगर आप सुना दें तो काफी अच्छा होगा।
0: श्रोताओ, अब हम पल्लवी जी की ओर रुख करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: थैंक यू, गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: क्या बात है, गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है। पल्लवी जी, एक बात बताइए, आपके चेहरे से खुशी टपकती है, क्या आप हमेशा ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहती हैं?
3: पल्लवी जी, क्या राज है आपकी हंसी का, आपकी खिलखिलाहट का?
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलो आज मैं राज ये बता ही देती हूँ आपको। इसका यही राज है कि बस योगा, मेडिटेशन, इस सेंटर से मैं जुड़ी हूँ। जब से मैं जा रही हूँ, मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है। बॉडी सब पेन वेन सारे गायब हो गए हैं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब
0: क्या बात है, आपने कहा कि दर्द गायब हो गया और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप योग कर रही
2: हैं? मुझे हो गए 10 साल योग करते करते।
0: 10 वर्ष हो गए हैं। तो आपने ये योग सेंटर जो ज्वाइन किया, कुछ कारण था या सिर्फ शौक था तो आपने ज्वाइन कर लिया?
2: नहीं, शौक था कि चलो जिम के बहुत सारे रिजल्ट देखे थे, पर मैंने सोचा चलो एक बार अपन योग ज्वाइन करके देखे। पर योग ज्वाइन करने के बाद तो ऐसा लगा कि मतलब जिम भी कुछ नहीं है, योगा इज द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया लगा।
0: क्या बात है, आपने कहा कि योग जो है वो बहुत बेस्ट है। और क्या क्या फायदे आपको मिले योग करने से?
2: योग करने से जो भी अपन वहाँ पे जो आसन कर रहे हैं, जो भी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब धीरे धीरे करके। और मेडिटेशन से क्या होता है कि जो अपने में मूड स्विंग वो भी 90%

0: परसेंट तक आपका कम हो जाता है। ये मैंने 10 सालों से रियलाइज किया है मेरे ऊपर कि जो भी मेरे को गुस्सा उत्साह आता था तो वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है। ये मैंने खुद पे अनुभव किया है सारा, ये योग की वजह से मेरे में ये काफी चेंजेस आया है। बहुत ही बढ़िया
1: पल्लवी जी, आपने कहा गुस्सा उत्साह, यानी आपको पहले गुस्सा आता था?
0: आता था, बिल्कुल आता था मैम।
1: तो यानी योग से आपका गुस्सा दूर हो गया, मेडिटेशन से जो है आप खिलखिलाने लगी, मुस्कुराने लगी।
0: वाह, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा श्रेय जाता है योगा को।
1: सारा श्रेय आप योगा को दे रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है पल्लवी जी। कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि सब जने योग से जुड़े, जैसे मेरे को फायदा हुआ वैसे आप सबको भी फायदा हो। आप भी बस मेरे जैसे मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए और योगा करते रहिए बस जिंदगी भर।
1: क्या बात है, आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही पल्लवी जी। अब ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: आशीमा जी ने जो बताया आप वही गीत सुनना चाहेंगे।

0: श्रोताओ, हमारे साथ हैं प्राकृतिक चिकित्सक और योगा एक्सपर्ट श्रीमती सुनीता जोशी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: मैम। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का श्री गणेश करें, एक बार आप हमारे साथ बोलें गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: क्या बात है श्रोताओं, बड़े ही जोश के साथ गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है और अब हम अपनी बातचीत का शुभारंभ करते हैं। मैम, चूंकि आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, योग विशारद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग करना क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ हैं। कहते हैं कि इससे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो हमारी मजबूत होती है, तो वाकई इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है? प्लीज आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। योग करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और शरीर स्वस्थ होता है। जैसा कि आपने कहा कि योग करना क्यों जरूरी है, तो योग करना इसलिए आवश्यक है कि आज के समय में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत नीचे गिरता जा रहा है। तो अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है और आने वाले समय में होने वाले रोगों से हम बचे भी रहते हैं। तो योग हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय से हमें योग की शिक्षा दी। उन्होंने इसलिए बताया है कि आने वाले समय में रोगों का भयंकर वातावरण होने वाला है और रोग से मुक्ति का एक ही समाधान है, योगासन, योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान करना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन शांत रहे और हम आनंद की अनुभूति करें। जब तक अंतर में आनंद नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं रह सकता। इसलिए प्रथम सीढ़ी योग ही है। दैनिक जीवन में योग करना जरूरी है, परम आवश्यक है
0: जी।
1: देखिए, वर्तमान समय में शारीरिक श्रम तो बहुत कम हो गया है, उसके कारण बहुत सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो योग करना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम योगाभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। पहले के समय क्या होता था कि सब हाथ से कार्य किए जाते थे और आज के समय में मशीनें आ गई हैं, तो काम की हमारी जो तरीका है, शैली है, जीवन शैली बहुत बदल गई। तो आज की जीवन शैली में अगर हम योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में योगाभ्यास, योगासन करना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम कि लाइफ स्टाइल बदली है, वर्क फ्रॉम होम के चलते जो है काफी समय तक व्यक्ति एक ही जगह बैठा रहता है, तो कुछ न कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। तो बेहतर होगा कि यदि हम योग और मेडिटेशन को अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैम, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि हमारी जो महिला श्रोता कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो योग के विषय में आप उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से क्या सलाह देना पसंद करेंगी?
1: देखिए, आज के समय महिलाओं की स्थिति पहले की महिलाओं की स्थिति से बहुत अलग हो गई। पहले महिलाएं घर में सारे काम किया करती थी, अब ये हो गया कि महिलाएं बाहर भी कार्य कर रही है, घर भी संभाल रही है। उसके कारण उनको मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और शारीरिक स्थिति बहुत नीचे की ओर गिरावट आ रही है। तो उनको शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, मानसिक शांति रहे और अपने दैनिक जीवन को संतुलित कर सके, इसके लिए उनको नियमित योगाभ्यास करना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होना या और भी ऐसा जॉब करना जिसमें सिटिंग ज्यादा होती है, तो बैठक के कारण भी शरीर की हमारी महिलाओं संबंधी रोग की वृद्धि हो रही है। तो उसके लिए उनको मूवमेंट करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत रोग की उत्पत्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अभी से जागरूक होना महिलाओं को बहुत आवश्यक। देखिए, अब 21 जून को विश्व योग दिवस आ रहा है, उसके लिए अभी से ही हमें दृढ़ संकल्पित होकर महिला श्रोता के लिए विशेष कर मेरा अनुरोध है, कुछ विशेषज्ञों के पास जाकर, योग शाला जाकर अच्छे से योग सीखे और फिर उसको रेगुलर अपने दैनिक जीवन में योगा अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। क्योंकि हमें यह योग दिवस संदेश दे रहा है कि अगर हमें मन में शांति, आनंद, सुख और चाहिए तो उसकी पहले से ही तैयारी करना, प्रारंभ करना है। तो आज से ही कोई विशेषज्ञ आपको मिलते हैं, योगाचार्य हैं, आपके आसपास जाकर देखिए और सीखिए अच्छे से विशेषज्ञ के द्वारा और फिर योगाभ्यास की पूरी ट्रेनिंग लेकर या उनके समक्ष या आप जहां स्थिति हो, जैसी अवस्था हो, वहां पर अभ्यास प्रारंभ करें, तभी आप स्वस्थ और निरोगी रह पाएंगे।
0: क्या बात है मैम, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही। निश्चित रूप से जो हमारी सखिया कार्यक्रम को सुन रही हैं, जो हमारी महिला श्रोता कार्यक्रम को सुन रही हैं, निश्चित रूप से वो आपकी बात को फॉलो करेंगी, आपकी बात का ध्यान रखेंगी और योग को आज से ही अपना लेंगी। मैम, प्राकृतिक चिकित्सा और योग का आपस में क्या संबंध है, ये भी आप बताएं प्लीज।
1: देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे अंदर के शरीर के जितना भी टॉक्सिन होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको निकालने में सहयोग करती है। और जो हमारे सफाई कर्मी अंग हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा जब चिकित्सा होती है, मिट्टी पानी वायु के द्वारा, तो अंदर जो भी विकार होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं और शरीर स्वस्थ होता है। और फिर उसके साथ जब हम योग करते हैं, तो जब अंदर कुछ भी कचरा शरीर में गंदगी नहीं रहेगी, तो योगाभ्यास अच्छा होगा, प्राणायाम अच्छे से होगा, ध्यान अच्छे से लगेगा, तो हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत गहरा संबंध है। तो योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा को भी दैनिक जीवन में अप्लाई करना चाहिए। कोई विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ही प्राकृतिक चिकित्सा सीखिए, उसको छोटे छोटे अनुभव लीजिए और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कीजिए। बहुत सरल प्रयोग है प्राकृतिक चिकित्सा के, इतने सरल कि आपको लगेगा ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ की राय और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास कीजिए, तो आपको योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का 100% रिजल्ट स्वास्थ्य पर मिलेगा।
0: क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। और अब आपकी पसंद का कोई गीत हो तो बताएं, इस अवसर पर आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मेरा एक पसंदीदा गीत है, फिल्म है हैसियत, उसका गीत है धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगानी। ये गीत बहुत ही अच्छा है, तो आप ये गीत हमें सुनाइए।

0: श्रोताओं हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित योग केंद्र के संस्थापक डॉक्टर जगदीश जोशी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैडम।
2: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: क्या बात है श्रोताओं, गुड मॉर्निंग इंदौर हो गई है और अब हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नजदीक है, क्या तैयारी चल रही है हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: मैडम, हम लोग इस वर्ष योग दिवस के अवसर पर 15 से लेकर 21 तारीख तक इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में हम योग के कैंप का आयोजन कर रहे हैं। यह हमारी संस्था योग मित्र मंडल के द्वारा किया जा रहा है। मैडम, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम योग के साथ साथ लोगों को जीवन शैली और ध्यान के विषय में विशेष तौर पर बताएं ताकि लोग योग की ओर ज्यादा प्रेरित हो सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक आम जन योग को सीख कर अपने जीवन में उतारे और स्वयं को और परिवार को स्वस्थ रखे, ताकि उसका जो मेडिकल का जो एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके मन में जो तनाव हो रहा है, परेशानियां हो रही है, वो उनसे अपने आप को मुक्त कर सके। तो मैडम, योग दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में योग के शिविरों का संचालन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से लोग योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा और जो वर्तमान में योग चल रहे हैं, अनेक प्रकार के लोग रोगों से ग्रसित हैं, उन रोगों से कैसे मुक्ति पाए, इसका उपाय और इसका प्रशिक्षण हम इस योग शिविर के माध्यम से लोगों को देंगे, ताकि जन जन तक स्वास्थ्य का संदेश फैल सके और हर परिवार स्वास्थ्य का आनंद ले सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, हमने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि हर घर में योग की बात फैले और उसके माध्यम से हम श्रेष्ठ स्वास्थ्य कैसे पा सकें, इसकी ओर हमको कदम बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग योग शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा योग को अपने जीवन में अपना सकें, स्वयं तो स्वस्थ रहें ही और परिवार को भी स्वस्थ रख सकें।
0: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आएगी और कहा भी है कि योग करें निरोग करें, तो इस मकसद को पाने में सफल होंगे, हमारी यही शुभकामना है। सर, जैसा कि कहा जाता है योग भारत की प्राचीन धरोहर है जो आज पूरी दुनिया को निरोगी बनाने में मदद कर रहा है। और सर, इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग, तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका क्या अभिप्राय है।

0: मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि योग दिवस की थीम क्या है, स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग। योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन को शांत, बुद्धि को जागृत और समाज में सद्भाव स्थापित करने का माध्यम भी बनेगा। योग अपनाकर हम स्वयं तो स्वस्थ होते ही हैं और विश्व को बेहतर बना सकते हैं, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि आप जैसा देख ही रहे हैं, पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, इसी वातावरण में योग के माध्यम से हम स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग का संदेश दे सकते हैं।
1: क्या बात है सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे प्रश्न का समाधान किया। और सर, अब एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना पसंद करेंगे?
0: मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि योग को अपने जीवन का अंग बनाएं और योग के साथ साथ हमको उसके ध्यान के पक्ष पर विशेष ध्यान देना है, ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी, इसके लिए भगवत गीता का बड़ा अच्छा श्लोक है, समत्वम योग उच्चते, मतलब हर परिस्थिति में समभाव से रहना, ताकि हम अपने जीवन में कभी परेशान न हो। क्योंकि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता चलती रहती है, पर यदि हम इसमें समभाव से रहेंगे तो निश्चित मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा और यह आपके लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ योग ही कर सका है।
1: क्या बात है सर, आपने तो गागर में सागर भर दिया। और बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि हमें हर परिस्थिति में समभाव से रहना है। सर, आज इस अवसर पर आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे, बताएं प्लीज।
0: देखिए मैडम, योग और शिव एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव ने ही सर्वप्रथम माता पार्वती को योग का संदेश दिया था, तो योग के सर्वोच्च गुरु कौन हो गए? शिव। तो केदारनाथ फिल्म का जय हो शंकरा प्लीज सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।

श्रोताओ, योग भारत की प्राचीन धरोहर है जो आज पूरी दुनिया को निरोगी बनाने में मदद कर रहा है। तो आइए 21 जून को हम सब मिलकर योग दिवस मनाते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बस इतना ही। एक और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। दुर्गेश नंदिनी को दे अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज चर्चा की गई, विषय था स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग। प्रस्तुतकर्ता थी दुर्गेश नंदिनी चौधरी।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीका और ईरान

0: बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का

0: उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of

0: Structure. While the Asian Age headlines, India France agree to double trade to $32 billion, 13 outcomes. 20 TMC rebels split in Lok Sabha, merge with regional outfit, reports the Tribune. Indian flagged sailing vessel sinks off Oman, crew rescued, informs the Hindu. The Financial Express, in its editorial piece titled Access Denied, writes that the decision by US authorities to restrict foreign access to Anthropic's latest AI models, Mythos 5 and Fable 5, may appear at first glance to concern a single company and a limited set of users. For India, the episode is a reminder that access to frontier technology cannot be taken for granted. Countries that wish to shape their digital future will increasingly need the capability to build, adapt, and sustain critical technologies at home. And finally, cross-control-dribble goal, fans tweak work schedules, body clock to watch World Cup football magic. In its opening weekend, the FIFA World Cup has begun capturing the imagination of Indian fans and viewers, juggling work, family commitments, obligations for the games, beginning after midnight and ending at dawn, sometimes even well into mornings, prompting Indian fans to step into a portal, choosing to live by another continent's clock, reads a story in the Times of India. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz, and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Avignon in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस बॉलीवुड में विभिन्न खेलों पर प्रेरणादायक और वास्तविक घटनाओं पर आधारित कई बेहतरीन फिल्में बनाई गई है। इन फिल्मों ने जहां हमारे खेलों के प्रति जनमानस में उत्साह को जगाया है, तो कई बार ये फिल्में वास्तविक घटनाओं से भी प्रेरित रही है। ऐसी कई फिल्में हैं, जैसे क्रिकेट पर आधारित फिल्में बनी 83, MS धोनी द अनकही कहानी, लगान, इकबाल और पटियाला हाउस। हॉकी पर चक दे इंडिया, गोल्ड और सुरमा जैसे फिल्मों का निर्माण किया गया। बॉक्सिंग और कुश्ती पर दंगल, मैरी कॉम और सुल्तान के साथ साथ साला खडूस जैसी फिल्में बनाई गई। एथलेटिक्स पर भाग मिल्खा भाग, पान सिंह तोमर और अन्य खेलों पर झुंड और पंगा जैसी फिल्में प्रमुखता से नाम ली जा सकती है। आज हम इस कार्यक्रम में श्रोताओं कुछ चुनिंदा फिल्मों पर बात करेंगे और उन्हीं फिल्मों के गीत आपको सुनवाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूखे से जूझते किसानों के स्वाभिमान, संघर्ष और खेल भावना की प्रेरणापूर्ण कहानी फिल्म लगान की। लगान पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स अभिनेता थे। हमारे देश में क्रिकेट का उत्साह चरम पर नजर आता है और इस खेल में खिलाड़ी जितना शामिल नजर आता है, उतना ही एक आम व्यक्ति नजर आता है। फिल्म जगत में भी एक ऐसी ही यादगार फिल्म आई जिसने हमारे देश के क्रिकेट प्रेम और किसानों के मुद्दे को रोचक तरीके से उठाया था। इसे देश की पहली महत्वपूर्ण स्पोर्ट फिल्म भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी लगान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म को बहुत सारी सराहना, पुरस्कार और सफलता मिली। इस फिल्म के जरिए किसानों के शोषित वर्ग स्वाभिमान की बात और खेल के जरिए अहिंसापूर्ण विरोध की शक्ति को चित्रित करने का संदेश दिया गया। फिल्म लगान आज भारत की चंद ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों में गिनी जाती है जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब बात करते हैं भारत के एक प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित फिल्म पंगा की। ये फिल्म उस खिलाड़ी के जीत, संघर्ष और रूढ़ियों पर काबू पाने की कहानी है। इसमें दर्शाया गया है कि सफल होने के लिए परिवार के समर्थन और प्यार का भी महत्व है। फिल्म में परिवार और स्पोर्ट्स का बेहतरीन समन्वय दिखाया गया है। जी हाँ, वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्म पंगा में कंगना रनौत ने एक ऐसी ही सेवानिवृत्त कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका की, जो 7 साल के बाद खेल में वापसी करती है और स्वाभाविक रूप से कई चुनौतियों का सामना करती है। कुशल निर्देशन और सुंदर पटकथा के साथ बेहतरीन अभिनय से सजी यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ऐसे किरदारों से भरी है जिससे एक आम व्यक्ति आसानी से जुड़ जाता है। वास्तव में पंगा फिल्म की कहानी कई महिला खिलाड़ियों के वास्तविक जीवन से प्रेरित है, जो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करती है और किस तरह से इन कठिनाइयों से उबरकर अपने मकाम को हासिल करती है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं 2005 में बनी हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की, जिसका नाम था इकबाल। ये एक युवा लड़के के बड़े होने की कहानी बयां करती है। इसका निर्देशन और सहलेखन नागेश कुकुनूर ने किया था। मुक्ता सर्च लाइट फिल्म्स के बैनर तले सुभाष गई द्वारा निर्मित इस फिल्म की कहानी एक दूरस्थ भारतीय गांव के क्रिकेट के दीवाने मूक बधिर लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो क्रिकेटर बनने और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट के टीम में खेलने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों को पार करने का प्रयास करता है। इस फिल्म को अन्य सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इकबाल दृढ़ इच्छा शक्ति और सपनों को सच करने की अद्भुत कहानी है, जिसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इस फिल्म में यह बताया गया कि अपनी कड़ी मेहनत और शानदार गेंदबाजी के दम पर इकबाल, जो कि उस फिल्म का मुख्य किरदार था, उसने राज्य की टीम में और अंततः राष्ट्रीय टीम यानी भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई और सफलता हासिल की।

श्रोताओं, पैरों से किस्मत लिखने वाले व्यक्तित्व की कहानी है फिल्म मैदान। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग और महान कोच सैयद अब्दुल रहीम की सच्ची कहानी पर आधारित एक प्रेरणादायक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी ये। इस शख्स को बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैदान फिल्म अनाउंस हुई और पता चला कि यह इस व्यक्तित्व के जीवन पर प्रेरित फिल्म है, तब लोगों ने ऐसे रहीम के बारे में पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, खेल प्रेमी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 1952 से 1962 के दौरान जब रहीम भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे, उस दौर को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम दौर माना जाता था। दो बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 1956 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। इंडियन फुटबॉल टीम को तब ब्राजील ऑफ एशिया भी कहा जाता था, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया गया। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे उन्होंने शून्य से पहुंचकर एक मजबूत टीम बनाई और सिस्टम की राजनीति से लड़कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

0: श्रोताओं, अब बात करते हैं एक नामुमकिन सपने के सच होने की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 83 की। भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत की सच्ची कहानी है फिल्म 83। श्रोताओं, 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में जब वर्ल्ड कप रचकर इतिहास रचा तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। अंडर डॉग टीम माने जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान कपिल देव की अगुवाई में विश्व क्रिकेट का खिताब जीता और दो बार विजेता रहे। जी हाँ, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को हराकर उन्होंने देश का परचम फहराया था। कबीर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म उसी शानदार जीत का जश्न मनाती है। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह ने कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये सच है कि टूर्नामेंट की शुरुआत में भारतीय टीम को कोई भी गंभीर दावेदार नहीं मानता था, लेकिन जब उस वक्त के कप्तान सुनील गावस्कर को हटाकर नए और कम अनुभवी कपिल देव को कप्तानी सोची गई थी और दी गई थी, तब टीम के अंदर भी कुछ असमंजस था। लेकिन बावजूद इसके कपिल देव की अगुवाई ने 1983 में इतिहास रचा और उसी पर आधारित इस फिल्म का गीत प्रस्तुत है आप सभी के लिए।
1: इंडिया इन डीप ट्रबल नाउ, हैविंग लॉस्ट टू मैचेस इन अ रो।
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम पे भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है। ग्रिप छुप।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसी फिल्मों की बात की थी जो वास्तविक जीवन के खिलाड़ियों और सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, और हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ फिल्म संगीत से अब आज्ञा दें, नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सवेरे 10:05 से सवेरे 11 तक आप सुनेंगे MH हॉटलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता हमसे बात करके अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो फ़ोन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और याद रहे आज रात 10 श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे, तो पत्र लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मंडळी, आजचा कार्यक्रम आपल्या मनासारखा रंगला की नाही ही हुरहुर राहील मनात, म्हणून अभिप्राय कळवावे ही अपेक्षा ठेवत मी ममता बोडस आपला निरोप घेते. पत्ता आहे: कार्यक्रम अधिकारी, मालवा हाऊस, रेसिडेन्सी एरिया, इंदोर 452001. नमस्कार.
1: अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है. आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत. इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अरुण मोरोने का सितार वादन, राग पूरिया कल्याण. तबले पर संगत उल्हास राजहंस की है.

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अरुण मोरोने का सितार वादन, राग था पूरिया कल्याण, तबले पर संगति उल्हास राजहंस की। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि सवेरे 10:05 से सवेरे 11 तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, और रात 10 श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सवेरे के 10 वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। उमस और गर्मी के बीच पूरे रतलाम जिले में मानसून का इंतजार है। किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और बोवनी के लिए बारिश की राह देख रहे हैं। गर्मी की दोपहरों और धमाचौकड़ी करते बच्चों का शोर स्कूलों में दोबारा जाने के उल्लास में परिवर्तित हो रहा है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चों के लिए कक्षाएं भी तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज ही धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाएगी। एक महीने से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, नियम, हवन आदि की पूर्णाहुति भी होगी। समान नागरिक संहिता के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जा रही है कि समान नागरिक संहिता के लिए अपने परामर्श और सुझाव वेबसाइट पर प्रदान करें। आयुष मंत्रालय के द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगरपालिका परिसर रतलाम में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। पूरे जिले में आलोट, जावरा, ताल, बड़ावदा, सैलाना, धामनोद, नामली, पिपलोदा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में रतलाम शहर समेत अधिकांश नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जबकि कुछ बचे हुए शिविरों का आयोजन 17 जून तक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसेवा और जन कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सीधे उनके घर पहुंचकर उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और व्यवस्थित बनाने पर विशेष काम किया जाएगा। बीते दिनों आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड पिपलोदा की ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती, ई टोकन प्रणाली एवं नरवाई प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र कालूहेड़ा के वैज्ञानिकों ने खेत बचाओ अभियान, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। पिछले दिनों जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में 1395 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार एवं प्रबंधन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 616 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान शिशु के जन्म के 6 माह तक और 6 माह के पश्चात पोषण संबंधी महत्व आदि पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीते दिनों जावरा तहसील के ग्राम बीमाखेड़ी में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग तथा खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ महामेले के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों और उज्जैन से आने जाने वाले रास्तों पर सिंहस्थ के दौरान आने वाले ट्रैफिक के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बैठकें की। रतलाम जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। कृपया
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।
2: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस दिन की खूबसूरत शुरुआत इस बात के साथ कि जीवन के बारे में ज़्यादा ना सोचें, थोड़ा उस पर भी छोड़ दें जिसने हमें जीवन दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और चलिए, आज का एमएच हॉटलाइन लेकर हम हाजिर हैं और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए उससे पहले जल्दी से एक बार फिर हमेशा की तरह आपको नंबर बता देते हैं। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो बिल्कुल हम तैयार हैं आपके फ़ोन कॉल्स को उठाने के लिए, और आप जल्दी से अपने अपने घरों में अपना फ़ोन तैयार रखें, हमें नंबर घुमाएं और अपनी पसंद का गीत सुनें। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पहले कॉलर कौन हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन।
4: हाँ जी नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं ग्राम बालोदा लखा तहसील बड़न नगर जिला जैन मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: कौन साहब बात कर रहे हैं, नाम बताएं अपना।
4: मैं कन्हैयालाल प्रजापति।
2: कन्हैयालाल प्रजापति जी।
4: हाँ बालोदा लखा।
2: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बड़े नियमित श्रोता हैं और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
4: हाँ हाँ बहुत दिनों से बात है।
2: जी जी जी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
4: वो फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत घर घर बहता जाए वो वाला।
2: गंगा तेरा पानी अमृत। हाँ। क्या बात है, गंगा का पानी तो सचमुच अमृत है और हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा माँ गंगा माँ के समान ही है, है ना?
4: हाँ हाँ तो सोमवती अमावस्या के भी आपको शुभकामना।
2: जी जी जी जी, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास करते हैं?
4: हाँ तो नहीं, वो क्या है स्नान कर लेते हैं 5 बजे और फिर बाद में प्रभात फेरी में निकल जाते हैं।
2: अच्छा, प्रभात फेरी में जाते हैं और स्नान कर लेते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और गीत भी सुनते हैं, है ना? तो चलिए, आपका गीत मुझे मिल चुका है तो पहुंचाती हूँ आप तक आपकी पसंद का गीत, है ना?
4: फिल्म गंगा तेरा पानी।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद रफी की आवाज में है गीत, है ना? तो बिल्कुल तैयार है आपका गीत, तो चलिए सुनवा दें जल्दी से।
4: हाँ मैडम सुना दीजिए।
2: चलिए, धन्यवाद फोन करने के लिए। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: एम एच होटलाइन।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारी सुजाम नगर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, अनिल भंडारी जी, कौन सा गीत
1: हाँ,
0: सुनेंगे आज?
1: आदम सूर्या के जन्मदिन पर उनकी याद में प्रेम सनम सनम का गीत सुनाएंगे।
0: अच्छा, सनम का कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ, ओ सनम
0: अच्छा,
1: गाना
0: टाइटल सॉन्ग
1: है,
0: ही
1: सनम
0: सुनेंगे। ओके,
1: सनम तेरी कसम, ये गाना
0: हाँ
1: सूर्या की
0: हाँ
1: याद में।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
1: सूर्या ने पिक्चर में बहुत गाने गाए, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, उसकी आवाज 60 साल बाद भी हम सुन रहे हैं और
0: जी जी
1: आनंद ले
0: जी
1: रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सभी गायक बहुत ही दिग्गज कलाकार और बहुत मेहनती कलाकार थे, और अपने गानों पर पूरी मेहनत करते थे, रियाज करते थे। तो आज भी उनके गाने हम याद करते हैं और सुनते हैं, है ना?
1: 60 साल हो गए, लेकिन उनके आवाज को हम भुला नहीं पाए
0: जी
1: आज
0: जी जी
1: तक।
0: बिल्कुल सही बात कही
1: और
0: आपने।
1: जब भी उसका गीत बजता है तो हमको खुशी होती है,
0: जी जी जी
1: आकाशवाणी से
0: हाँ
1: आकाशवाणी के पुराने गीत सुनते हैं, हमें बहुत खुशी होती
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल। आप जैसे श्रोता हमारे पास है, और सुरैया जी को इस गीत के माध्यम से हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सुनवा देते हैं आपके पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ, एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी, आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: गणेश भाटी, बागली जिला देवास से। हाँ,
0: गणेश भाटी बागली से बात कर रहे हैं आप। गणेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहता हूँ, ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा जी, अच्छा, ओके ओके ओके।
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: ये दिल है कि मानता नहीं
0: अच्छा
1: का
0: अच्छा अच्छा
1: टाइटल सॉन्ग।
0: ओके ओके, तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं जल्दी से आपको, है ना?
1: हाँ
0: चलिए,
1: ठीक है,
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालड़ा नगर इंदौर से।
0: अच्छा, अमीना भी मंसूरी जी। कौन सा गीत सुनेंगी अमीना भी?
1: रफी साहब को सुना दीजिए मैडम।
0: रफी साहब का कौन सा गीत सुनवा दें?
1: वो सलाम आपको मीठी नजर को सलाम,
0: सलाम
1: आपकी मीठी
0: आपकी।
1: नजर,
0: हाँ हाँ हाँ
1: सलाम
0: हाँ
1: आपकी मीठी नजर को सलाम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपकी मीठी नज़र को सलाम करते हैं।
1: जी मैडम,
0: हाँ जी। अच्छा,
1: और
0: मैंने
1: सब
0: आज एक
1: सलाम।
0: बहुत अच्छी सी बात कही थी, आपने अगर प्रोग्राम में सुनी हो तो। मैंने कहा था
1: हाँ
0: कि इंसान को हमेशा, मतलब, तनाव नहीं लेना चाहिए, हमेशा कुछ चीज़ें ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए, है ना? तो आप क्या
1: हाँ जी
0: मानती हैं, ये
1: मैडम,
0: ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
1: होना चाहिए ना मैडम, सारी चीजें ईश्वर पे छोड़ना चाहिए, जैसा टाइम हो वैसा गुजारना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: बहुत अच्छे से
0: आप भी
1: गुजार
0: ऐसा
1: लेना
0: सोचती हैं,
1: चाहिए।
0: और कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो करती हैं ऐसा?
1: हाँ, अरे 24 घंटे सोचते हैं मैडम,
0: अच्छा,
1: अच्छी
0: चौबीस
1: बुरी
0: घंटे
1: नींद, अच्छी
0: सोचते
1: बुरी
0: हैं,
1: दोनों चीज आती है,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: दोनों को
0: है।
1: स्वीकार करना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं।
1: हाँ जी मैडम,
0: चलिए
1: आप
0: चलिए,
1: लोगों कैसे हैं आकाशवाणी में?
0: हम सब अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम,
0: आपका
1: आप
0: स्वास्थ्य
1: लोगों की
0: अच्छा
1: दुआ
0: है?
1: से। हाँ, आपकी दुआ से अच्छी हूँ अब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की दुआ सब पर रहनी चाहिए। और
1: हाँ,
0: चलिए,
1: थोड़ा बहुत
0: आपका
1: तो होता
0: बहुत ही
1: रहता है,
0: प्यार। हाँ जी,
1: थोड़ा बहुत तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो होता रहता
0: नहीं
1: है मैडम।
0: ठीक है, देखिए, जो वक्त आए, जो फेज आए, जो दौर आए, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए,
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना?
1: मैडम,
0: तो और इस जिस भी उम्र में है, हम खुश रहना चाहिए, प्रसन्न प्रसन्न
1: खुश
0: रहना
1: रहना चाहिए।
0: चाहिए, है ना? तो वो तो अच्छा ही
1: हाँ
0: रहता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: खुश रहने से तो और थोड़ा तनाव दूर हो जाता
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपका तनाव और बाकी श्रोताओं का तनाव भी अभी कम करते हैं और सुनवा देते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत। फ़ोन करने के लिए
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: अच्छा, भगवान सिंह परमार जी, क्या करते हैं आप?
1: दीदी खेती किसानी करते हैं और आकाशवाणी इंदौर को सुनते रहते हैं, सुबह भी सुनते हैं और शनिवार के दिन शाम को जो फोन इन कार्यक्रम आता है दीदी, सुनते हैं।
0: सारे फोन इन कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी दीदी, हमें फोन इन कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद रहते हैं, जो लाइव रहते हैं।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी तो खेती बाड़ी को बारिश का इंतजार होगा, है ना?
1: हाँ दीदी, बारिश तो हो रही है दो दिन से, लेकिन कम हुई है अभी, जब ज्यादा हो जाएगी, जब बोनी करेंगे सोयाबीन मक्का की। दीदी
0: बिल्कुल बिल्कुल, सोयाबीन और मक्का की बुआई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से उगाएंगे तभी हम सब अच्छे से खा पाएंगे।
1: जी हाँ दीदी, थोड़ी बरसात हो जाए फिर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए और बहुत अच्छी बारिश हो, ताकि सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, है ना?
1: जी हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में सोचा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके बारे में तो हमें ही क्यों, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किसान अच्छे से खेती बाड़ी करेगा तभी तो अन्न मार्केट में आएगा ना।
1: जी हाँ दीदी बिल्कुल,
0: और ईश्वर सब पे कृपा रखे, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं सबसे, ईश्वर से, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए इस बारे में, है ना?
1: जी हाँ दीदी
0: जी जी जी। चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल चुका है। वैसे कौन सा गीत बताया था, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है बातों में।
1: फिल्म का नाम है राज और गाने के बोले आपके प्यार में हम सवरने लगे, ये वाला गीत सुना दीदी आपको, डेलिकेट रहेगा जो
0: नहीं नहीं मुझे नहीं, एक्चुअली ये उसको डेडिकेट कीजिए जो आपके सबसे करीब हो। शादी हो चुकी है आपकी?
1: जी हाँ शादी हो चुकी है दीदी, बच्चे भी हैं, एक बच्चा है 15-16 साल का, एक बच्ची है 7 साल।
0: बिल्कुल, तो अपनी बीवी को सुनवाइए ये गीत, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी और आपकी बहुत मदद भी करेंगी, है ना? तो चलिए आपको और आपकी श्रीमती जी दोनों को समर्पित करते हैं ये गीत और सुनवा देते हैं आपको, है ना?
1: धन्यवाद दीदी,
0: धन्यवाद।
2: गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते, ग्राम
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सोराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हूँ।
0: हाँ जी, बोलिए हैदर साहब, कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: फिल्म महबूब की मेहंदी का सुना दीजिए।
0: महबूब की मेहंदी।
1: ये जो चिलमन है, रफी साहब की आवाज में गीत है। हाँ
0: हाँ, बिल्कुल, एक मिनट
1: बस
0: में
1: ये
0: आपका
1: सुना
0: गीत देख
1: दीजिए।
0: रही हूँ, बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा गीत है। और आपने देखी है ये फिल्म?
1: हाँ देखिए, ये राजेश खन्ना वो लीना चंदावरकर की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: हाँ
0: फिल्मों का शौक है आपको मतलब?
1: हाँ पहले आपको मैडम देखने को नहीं मिलती है पुरानी फिल्में, पहले बहुत देखी।
0: एक मिनट, है ना, मैं आपका गीत सर्च ही कर रही हूँ।
1: हो
0: क्या करते हैं हैदर साहब आप?
1: मैडम, यू तो मैं खेती किसान से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ और 1980 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और मन भवन में भी लेटर लिखता रहता
0: हाँ
1: हूँ।
0: बिल्कुल, मन भवन में भी आपके लेटर आते हैं।
1: हाँ
0: तो अभी तो बारिश कम हुई है, तो आप सब उसी का इंतजार कर रहे होंगे, है ना?
1: मैडम, अभी बस तो सब खेत वेत को हंकवा के छोड़ दिया है, बस पर्याप्त पानी गिरेगा तो सोयाबीन की बोवनी करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। काई की बोनी करेंगे आप सबसे पहले?
1: सोयाबीन,
0: अच्छा, सोयाबीन की बोनी करेंगे।
1: सोयाबीन मक्का।
0: अच्छा, सोयाबीन और मक्का उगाते हैं अभी, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है। चलिए, आपका गीत भी मिल चुका है ना? तो
1: हाँ
0: हैदर साहब, आपकी फरमाइश पूरी करें।
1: हाँ ठीक है, कर दो ना।
0: चलिए, ओके, धन्यवाद
1: ओके
0: फोन करने
1: ओके
0: के लिए।
1: ओके, थैंक यू थैंक यू।
2: ये जो चिलमन है

0: हेलो, एमए छोट लाइन कार्यक्रम।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कश्मीर से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर।
0: कई बार आपसे बात होती है फोन पर, है ना?
1: हाँ, मैं करता रहता हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: चैनल बहुत पसंद है।
0: हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप थोड़ा सा अंतराल रख के बात करा कीजिए, है ना? चलिए आज।
1: हाँ जी, अंतराल की बात।
0: हाँ हाँ, एक महीने का अंतराल। एक्चुअली क्या, देखिए, नए श्रोता जुड़ेंगे ना तो आपको भी फोन मतलब बातचीत सुनने में मजा आएगा, गीत सुनने में भी मजे आएंगे।
1: नहीं, 15 दिन तो काफी है।
0: ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: कुली नंबर 1।
0: कुली नंबर 1 गोविंदा की फिल्म है।
1: हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: पूरी खा रहा था।
0: तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
1: हाँ हाँ, ये वाला
0: बिल्कुल। किसको किसको मिर्ची लगी तो क्या करने वाले हैं? किसी को डेडिकेट कर रहे हैं या अपनी अपने लिए सुन रहे हैं गीत?
1: जहाँ एक लिस्नर, इनका नाम है खालदा जान।
0: हाँ जी,
1: खालदा जान।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये फिल्म देखी थी आपने?
1: हाँ, ये फिल्म मैंने देखी थी पहली।
0: अच्छा, तो कैसी लगी थी ये फिल्म आपको?
1: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
0: तो आप कॉमेडी मूवीज ज्यादा देखते हैं? किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं?
1: आजकल तो मैडम देखते नहीं, आज तो सब टीवी नहीं देखते, आज तो मोबाइल पे ही चलते।
0: हाँ, मोबाइल पे ही चलते हैं। मोबाइल के आने से टीवी के लिए थोड़ा सा क्रेज कम हो गया है।
1: हाँ, यूट्यूब पे सब कुछ चलता है आज।
0: सच्ची बात है, सच्ची बात है। चलिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो अच्छी बात है।
1: हाँ, मोबाइल ऐप से भी सुनता हूँ, रेडियो, ये सब कुछ सुनता हूँ बाहर का, जैसे मोबाइल ऐप से ही।
0: ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल चुका है तो सुनवा देते हैं जल्दी से, है ना?
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो, एमए छोट लाइन।
1: नमस्कार मैम, तहसील
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, क्या करते हैं आप?
1: मैम हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं आप भी? अच्छा, तो अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं?
1: जी
0: अच्छा, इससे पहले कौन सी फसल कटी है अभी?
1: अभी तो गेहूं और चने की फसल लगी थी, वो कट के अभी धान की तैयारी हो रही है।
0: अच्छा, धान की तैयारी। तो क्या तैयारी करनी पड़ती है जब नई फसल बोई जाती है? तो क्या क्या
1: ये
0: तैयारी
1: मतलब
0: करते हैं?
1: हाँ वो तैयारी तो हमारे पिताजी करते हैं, उन्हें पता होगा। वैसे मैं तो
0: अच्छा
1: ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं आपके कार्यक्रमों से जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो आप फिर कैसे, आपका आपका मतलब कैसे चलता है? आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है या कुछ सीखते भी हैं आप?
1: नहीं मैं मेरा काम खुद करता हूं मैं।
0: अच्छा, आप अपना काम खुद कर लेते हैं, अच्छी बात है। ये तो चलिए, आपके पसंद का गीत बता दीजिए जल्दी से।
1: छोटे सरकार का सुनवा दीजिए।
0: छोटे सरकार का गीत सुनवा देते हैं। चलिए, आपके पसंद का गीत मिल गया है हमें, तो जल्दी से सुनवा देते हैं। ठीक है,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन, कोहिनूर
0: जीनत जी, इंदौर में कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: कॉलोनी से।
0: अच्छा, कोहिनूर कॉलोनी से। तो जीनत
1: जी
0: जी, क्या करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ हूँ बस।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हूँ। घर की देखभाल करती हैं।
1: जी, घर की देखभाल, बच्चों की। तीन
0: कितने बच्चे हैं आपके?
1: लड़के हैं। जी
0: अच्छा, 3 लड़के हैं। तो बड़े हैं कि छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े एक तो जॉब पे जाते हैं पापा के साथ ही,
0: हाँ
1: दो पढ़ते
0: हाँ
1: हैं, सोलह
0: अच्छा, कौन सी
1: साल
0: क्लास में
1: के,
0: पढ़ते हैं
1: तेरह साल
0: वो?
1: के।
0: हाँ जी,
1: 16 साल के हैं एक तो, और एक 13 साल के, और एक 21 साल के।
0: अच्छा। तो तीनों बच्चे अभी मतलब एक काम काज में लगा हुआ है और दो पढ़ाई में लगे हुए हैं।
1: जी, पापा के साथ ही जाते हैं उनकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनवाएं जीनत आज आपको?
1: जी, मर्द पिक्चर का सुनवा दीजिए। सुन
0: मर्द पिक्चर का, अमिताभ
1: लूंगी यार
0: बच्चन की
1: तुझे
0: फिल्म है
1: प्यार
0: ये, है ना?
1: से। जी
0: अमिताभ जी की फिल्म है मर्द।
1: जी अमिताभ अमृता सिंह।
0: जी, देखी थी आपने फिल्म की? नहीं देखी थी।
1: हाँ, देखती रहती हूँ, इस पे भी, टीवी पे भी आती रहती है जब भी देखती हूँ।
0: अच्छा, तो फिल्में देखने का शौक है आपको मतलब?
1: हाँ, है, थोड़ी देर के लिए जाती हूँ तो देख लेती हूँ नीचे टीवी
0: अच्छा,
1: में,
0: घर का
1: सारी
0: काम काज करते
1: फिल्में।
0: करते फिल्म भी निपटा देती है।
1: नहीं, वो तो फिल्म तो रात को देखती हूँ, अभी तो बस रेडियो सुनती हूँ दिन भर।
0: अच्छा, दिन भर रेडियो के साथ। हाँ, ये एक्चुअली रेडियो की अच्छी बात है ना कि आप दिन भर काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं।
1: जी,
0: तो
1: 8 बजे
0: ये
1: जाती हूँ तो बस 10 बजे तक देखती हूँ कुछ फिल्में।
0: अच्छा,
1: और कल ही आ रही थी अमिताभ बच्चन की मर्द।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, तो इसीलिए आज हम मर्द फिल्म का गाना सुनवाने की फरमाइश हो गई आपकी।
1: जी,
0: चलिए,
1: सब फिल्म
0: गीत के
1: अच्छी
0: बोल
1: आती
0: भी
1: है
0: बता
1: मुझे
0: दीजिए
1: वैसे।
0: जल्दी से।
1: जी,
0: गीत के बोल बता दीजिए।
1: सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया
0: अरे
1: क्या
0: वाह,
1: करे।
0: क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाती है। चलिए सुनिए, आपकी पसंद का गीत है ना?
1: जी, शुक्रिया मैम।
0: शुक्रिया।

0: for goodness sake.
1: Name it, child, name it.
0: Father, I love the Dangevala. I want to meet him.
1: No problem.
2: संडे का चर्च होने के बाद याद करना उसे दिल में, गॉड को सलामी देना जरूर फिर जाना उसे मिलने।
3: कोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
4: फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

0: हेलो, एमए छोटलाइन कार्यक्रम।
1: विजय जी, जय जिनेन्द्र।
0: जय जिनेन्द्र, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद तस्लीम शेख बोल रहा हूँ, धर्मपुरी जिला।
0: अरे वाह, क्या बात है, शेख साहब बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनवाए शेख साहब आज आपको?
1: इंसाफ फिल्म का मिल जाएगा, मुकेश जी और आशा भोसले की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर्च करती हूँ इंसाफ फिल्म का गीत, आपको सुनवा देते हैं जल्दी से। गीत के बोल कौन से हैं?
1: ये तूने क्या कहा कहा होगा,
0: ये तूने क्या कहा होगा। बिल्कुल, मैं सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या चल रहा है अभी?
1: बस मेरी फ्लोर मिल पे हूँ।
0: अच्छा, आपकी फ्लोर मिल पे हैं। ओके, तो किसकी मिल है आपकी?
1: फ्लोर मिल आटा चक्की।
0: अच्छा, आटा चक्की है। अच्छा, आटा चक्की पे ही है इस वक्त आप?
1: जी जी।
0: अच्छा अच्छा, इंसाफ का ये गीत है मेरे पास, तुझे प्यार इतना, ये सुनवा दें?
1: शरारत का सुनवा दीजिएगा, अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी।
0: चलिए मैं ये वाला ढूंढने की कोशिश करती हूँ आपका, है ना?
1: जी, शरारत का, रफी साहब की आवाज में। अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी, कभी आता दिया कभी रुला।
0: अजब है ये दास्ता तेरी,
1: ये तो है शायद।
0: हाँ हाँ, होगा, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ, आपका गीत मिल जाएगा। और बताएं, अभी अभी तो गर्मी का मौसम थोड़ा कम हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है बीच बीच में।
1: नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी, निमाड़ में समझ लो कि सूरज देवता तौबा करवाने पे बैठे हैं सब।
0: हाँ, ये बात तो सही है। गीत कौन सा बताया था आपने शरारत का?
1: अजब है दास्ता तेरी ये जिंदगी।
0: अजब है दास्ता तेरी, पुरानी गीतों के शौकीन लगते हैं आप मुझे, है ना?
1: जी,
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छे अच्छे, वैसे आपकी चॉइस बड़ी अच्छी होती है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका गीत मुझे जल्दी से मिल जाए। और बताएं अपने बारे में।
1: फ्लोर मिल है?
0: हाँ, वो तो खैर मैंने सुना, फ्लोर मिल है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और घर में कौन कौन है आपके?
1: पत्नी है, दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं।
0: अच्छा, तो सबकी शादी हो चुकी है या अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं?
1: तीन लड़की की शादी कर दी।
0: हाँ हाँ,
1: बड़ा लड़का कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर है।
0: अच्छा,
1: और छोटा वाला लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए मुझे शरारत फिल्म का एक गीत मिला है, मैं वो सुनवा देती हूँ आपको, है ना?
1: ठीक है, नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से दे लीजिए।
1: कयूम खान साहब और बिहार नामदेव जी, इंदौर सोमानी नगर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए उनके साथ आपको भी सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गीत शरारत फिल्म से।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत।
0: मोहनलाल जी बालोतरा राजस्थान से बात कर रहे हैं आप
1: जी? खम्मागणी।
0: खम्मागणी, खम्मागणी, आपको भी राम राम।
1: राम राम जी।
0: चलिए जल्दी से सबसे पहले गीत बता दीजिए क्योंकि टाइम काफी कम बचा है हमारे पास।
1: तो शरारत फिल्म का कोई भी गीत चलेगा मैम।
0: कौन सी फिल्म का गीत?
1: शरारत।
0: शरारत फिल्म तो अभी मैंने सुनवाई है। शरारत फिल्म का गीत तो मैंने अभी सुनवाया।
1: तो मैं कॉल कर रहा हूं सर, आपकी पसंद का कोई भी गीत चलेगा।
0: अच्छा, मेरी पसंद का कोई सा भी गीत, तो चलिए शरारत फिल्म का ही गीत सुनवा देते हैं फिर आपको, है ना?
1: ओके।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करते हैं बालोतरा में आप?
1: मैं किराने की रेवड़ी बजाता हूँ और 1994 से नियमित श्रोता हूँ आकाशवाणी का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, नई वाली शरारत फिल्म का गीत सुनवा देते हैं। इससे पहले मैंने पुरानी शरारत फिल्म का गीत सुनवाया था, आपको नई वाली का सुनवा देती हूँ, ठीक है?
1: ओके जी।
0: चलिए जल्दी से आपकी फरमाइश पूरी करते हैं
1: जी।

0: हेलो MH हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: के साथ लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: कहीं चिलचिलाती गर्मी तो कहीं बेसब्री से आसमान की ओर ताकती हुई निगाहें, कहीं खूबसूरत सौंधी खुशबू से लबरेज ठंडी ठंडी बयारें। यही तो है मौसम, यही तो है ज़िंदगी। चलिए, मौसम को तो ना हम बदल सकते हैं ना आप, बस हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी बादलों की ये जमावट बसे, बादलों की ये जमावट बरसे। फिलहाल हम आपकी खूबसूरत बातों और खूबसूरत गीतों के साथ इस माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम। फ़ोन करें, गीत सुनें। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मध्य प्रदेश प्रसारण ना?
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: आज हम आपसे बातें करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों पुणे का मौसम कैसा है।
1: यहाँ तो सर बिल्कुल भी बारिश नहीं है।
0: अच्छा,
1: सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे।
0: ओहो,
1: एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है अभी। आज तो 14 तारीख हो गई, फिर भी कोई बारिश का पता नहीं है अभी।
0: लगभग हमारे देश के अनेक हिस्सों में धीरे धीरे मानसून दस्तक दे रहा है। कहीं कहीं प्री मानसून के हालात बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन पुणे में पानी नहीं पहुंचा है।
1: नहीं
0: जी,
1: जरा भी नहीं है।
0: तो गर्मी भीषण होगी।
1: हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, पसीना आते रहता है। गीली गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना है।
0: जी जी जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक दो दिन के भीतर ही आपके यहाँ पर भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: हाँ जी
0: जी जी, बताइए श्रीपाद जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: हाँ जी, हमें सुनना है फिल्म हमारी याद आएगी मैं का गाना सुनना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया हुआ है। सोचता हूँ ये क्या किया मैंने।

0: कर्ज ले लिया मैंने।
1: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, राधिका बात कर रही हूँ नीमच से।
2: कैसे हैं राधिका जी?
1: पर हम नीमच से बोलते हैं के गांव में से। बोले आवाज गांव में रहते हैं।
2: अच्छा जी, क्या हाल है इन दिनों नीमच के?
1: सर बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है भयंकर की, पानी का नामो निशान नहीं अभी तक, छीटे छाटे आते हैं, मौसम बनता है लेकिन उमस होती है बहुत।
2: चलिए देर सवेर आपके यहाँ पे भी मानसून पहुँच ही जाएगा, उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँचे, आपको राहत मिले। फिलहाल कोई ऐसा गीत बताइए जिससे मौसम आपके यहाँ का बदल जाए।
1: सर गाने मेरे को ना वो सुनना है, गाने का तो मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है और गाने की बीच की लाइन याद है ना।
2: हाँ हाँ बताइए।
1: भीगी भीगी रात में दिल का थामन नाम ले, ये गाने की लाइन है सर। मेरे को ना गाने के बोल भी याद नहीं, एकदम से फोन लग गया ना मेरा।
2: अच्छा जी,
1: आजा सनम मधुर चांदनी में हम।
2: अच्छा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम,
1: गाने के बोल याद है सर, बस मूवी का नाम नहीं।
2: आपने फोन किया राधिका जी, इसके लिए हम आपको देते हैं बहुत
1: थैंक यू।
2: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: अरे श्रीमान जी को नमस्कारम।
1: नमस्कारम जी।
0: अरे कमाल हो गए सर जी, ये मान के चलिए सदियों गुजर गए तब कहीं जाके फोन लगाए, और अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सर जी श्रीमान जी से भगवान से कि कल फोन लग जाए, नहीं तो समझ लो कि मैं दुबला पड़ जाता हूँ, खाना भी नहीं खाता सर।
1: अच्छा जी।
0: कहते हैं सर जी, अजीज होता है ना हबीब होता है, दूर होता है ना करीब होता है, और अमीर होता है ना गरीब होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और अच्छा दोस्त जो वक्त में साथ दे दे वही सबसे अच्छा दोस्त होता है श्रीमान जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी आपके इस वक्त को बहुत हसीन बनाना चाहते हैं। आप अपना तारुफ दीजिए।
0: अरे सर जी, अब तो मैं पता भी बता दूंगा, गाने भी सुन लूंगा, तभी तो मजा आएगा। और चूंकि जब फोन लग जाता है बातें मायने रखती हैं, गाना तो एक बहाना होता है। सर जी मैं पता बता दूं अपना।
1: जी।
0: ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
1: खान साहब, हमने आपको जान लिया था, लेकिन हमारे बाकी के श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय जानना चाहते थे।
0: अरे सर जी क्यों नहीं जानेंगे, आप हमारे दिल में बसे हैं और हम आपके दिल में बसे हैं, भाभी जान भी तड़प रही है बेचैन।
2: नमस्कार भाई साहब,
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
2: आप कैसे
1: हम
2: हैं?
1: तो बहुत खैरियत से हैं और चाहते हैं कि आप भी बहुत सुकून से हों।
2: जी भाई साहब,
0: अब ये मान के चलिए सर जी, हम दोनों लोग मिलजुल करके अभी अचार रख रहे थे, मैं आम काट रहा था वो ये मसाला गूंज रही थी।
1: बहुत बढ़िया।
0: दोनों जी जी श्रीमान जी, दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं और साथ में आपको फोन लगाते रहे, तो फोन तो इन्हीं ने लगाया, मैं तो हार गया आपकी भाभी जान ने।
1: तो ये कितने दिनों बाद फोन लगा है ये भी बता दें।
0: अरे सर जी मुझे तो लगता है, अब मैंने गिनती तो नहीं गिना लेकिन महीनों तो होते होंगे सर
1: चलिए,
0: श्रीमान जी।
1: आपकी बेसब्री आपकी आवाज से झलक रही है।
0: हाँ सर जी, और गाना सर जी बता दूं, गंगा की सौगंध का ही सुनवा देना सर जी, क्योंकि गाने हमारे कुछ अलग हटके होते हैं,
1: हाँ
0: धुआंधार होते हैं और धांसू होते हैं, जिसमें आप लोगों को नाचने के लिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को ऑल वर्ल्ड के श्रोताओं को मजबूर कर दे सर जी। हाँ तो गाना वो है सर जी, हम दोनों लोग गुनगुना ले फिर बता दूंगा, लता और किशोर जी की आवाज में है वो गाना। आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी रे, तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी,
2: लंबू तेरी लाली उतर जाएगी, लंबू तेरी लाली उतर जाएगी। नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम कोशिश करेंगे ये गीत आपको जरूर सुनवाएं।
0: जी सर जी, है आपके पास श्रीमान जी, और आप भी नाम बता देंगे, दिनेश भैया बोल रहे हैं।
1: नहीं नहीं जी, आज इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त शिवम।
0: अरे कमाल हो गए सर जी, आप तो कहते सत्य ही शिव है, शिवम ही सुंदरम है, आप तो बहुत अति सुंदर है, और आपकी आवाज में वो जादू है कि जाना होता है कहीं और खींचे आपकी ओर चले जाते हैं सर जी, और ना जाने आपने बातों ही बातों में अपना बनाना और ये हुनर आपने सीखा कहाँ से श्रीमान जी।
1: बस जी, ये सब कुछ आपकी इनायत है। हम तो सिर्फ अपने सभी श्रोताओं के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम बना सकें, पेश कर
0: सर जी
1: सकें।
0: एक रिक्वेस्ट और, अच्छा ये गाना मैं प्रेमदास बाबा जी के साथ में सुनूंगा, उनका नाम ले लूं, बुजुर्ग हैं भैया वो, क्योंकि अगर उनका नाम ले लूं तो थोड़ा उनको खुशी मिलती है, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग श्रोता, ये आ कहना चाहता हूँ सजीत जी
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल। खान साहब, आपका गीत हम पेश किए देते हैं, आपने
0: जी
1: कॉल
0: जी
1: किया इसके लिए आपको देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
0: धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर जी।
3: अरे आंख ले

0: समंदर के अंदर से ले जाऊंगा धन्नो ले जाऊंगा। अरे मैं तो तुझको ठेठ जलंधर, हाँ हाँ ठेठ जलंधर, तो कोर बंदर
1: ना ना,
0: तो गोड़ बंदर
1: नहीं बाबा,
0: तो बोरी बंदर
1: नहीं,
0: कोर बंदर गोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
1: ना ना ना ना नहीं।
0: ओ तो फिर आजा मेरे दिल के अंदर, आजा आजा आजा आजा।
2: हेलो नमस्कार मैम
3: जी। नमस्कार
2: सर। नमस्कार सर। नमस्कार बिल्कुल। थैंक यू सर।
3: इंतजार पूरा हुआ
2: इंतजार की घड़ी खत्म हुई सर
3: जी। इंतजार के लिए जैसे आंखें पथराती है वैसे हमारे कान भी पथरा जाते हैं हमारे श्रोताओं की आवाज सुनने के लिए। बताइए किन से हमारी बातें हो रही हैं।
2: अरे मधुर आवाज, सच्ची सीधी आवाजों के जादूगर अगर है तो विविध भारती भोपाल के सारी स्टाफ।
3: ये आपका प्यार है मोहब्बत है। किन से हमारी बात हो रही है।
2: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी मनमोजी बोल रहा हूँ सर।
3: अच्छा जी नियाज भाई।
2: जी जी इंदौर कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से बोल रहा हूँ सर। नियमित श्रोता हूँ आपका दर्पण का और बहुत अच्छा लिखते थे और आप पहले पत्र भी आप बहुत अच्छे पढ़ते थे।
3: मतलब आप बड़े दिलोजान से कार्यक्रम सुनते हैं।
2: हाँ बिल्कुल बढ़िया सुनते हैं। फरमाइशी भी कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है सर आपका बिल्कुल बारह से मिल वाला।
3: तो नियाज भाई आज कौन सा गीत आपके लिए पेश किया जाए।
2: आपकी पसंद का गाना सुन रहा हूँ सर मैं तो अभी आज। मैम तो सुनाती है मुझे वो है ना गाना वो सुनना है अपना कर्ज का।
3: कर्ज फिल्म का।
2: दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने।
3: बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत गीत है रफी साहब का गाया हुआ है।
2: जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है उसकी कड़ी बहुत प्यारी है लगी और ये इस गाने में बिल्कुल ऐसी सादगी और जीवन का सच्चा सच्चा प्यार की मोहब्बतों को एजाम देता सर वो।
3: बिल्कुल बिल्कुल आपने उस गीत की रूह को पकड़ लिया हो ऐसा लगता है। चलिए तो नियाज भाई बिना देर किए हुए ये गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
2: बिल्कुल शुक्रिया सर बहुत
3: शुक्रिया। धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो। हाँ नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कन्या दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर जी।
0: परशुराम साहू जी
1: जी सर।
0: दमोह से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, ग्राम कन्या दमोह के पास स्थित है सर गांव।
0: अच्छा, आपके
1: जी सर।
0: गांव की खासियत क्या है, क्या देखने लायक है आपके गांव में?
1: सर हमारे गांव से पास स्थित है सर कान्हा किसली है, बलाचखंड माइंस है सर, जो एशिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। हाँ
0: हमने
1: सर
0: देखा है और
1: जी
0: कान्हा
1: सर।
0: किसली भी हम घूम आए हैं।
1: चलो अच्छा है सर।
0: आप भी घूमे हुए हैं?
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: एक अलग रोमांच होता है जब कुदरत के इतने करीब हम जाते हैं।
1: बिल्कुल सर जी, प्रकृति से निकटता वास्तव में जो जीव जंतु है सर, जंगली जीव जंतु करीब से देखना एक अलग ही खुशी होती है सर। चाहे सर एक चिड़ियाघर का शेर और कान्हा किसली का जो जीव जंतु है, उनमें देखने में जमीन और आसमान का अंतर होता है सर,
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मैं
0: आपने
1: महसूस किया हूँ सर जी।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो रोमांच है, जो एक दिलचस्पी जागती है, जो एक थोड़ा सा एक डर
1: जी
0: भी
1: सर जी
0: लगता है,
1: बिल्कुल
0: एक उत्सुकता भी रहती है। जी
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: उसका एक अलग ही कहना है।
1: हाँ सर, और कभी कभी सर जो कान्हा किसली जो जीव जंतु है सर, हमारे गांव स्थित जंगल के आसपास भी दृश्य देखने को मिलता है सर उनका। जैसे खास तौर में सर गर्मी के दिनों में तेंदुआ अक्सर नजर आता था सर हमारे गांव के जंगल के आसपास।
0: जी, क्योंकि पानी
1: हाँ
0: की
1: सर
0: तलाश में ये जानवर जो हैं, क्योंकि वहाँ कोई परिधि तो बनी नहीं है, कोई बाउंड्री बनी नहीं है,
1: हाँ
0: खुला
1: सर।
0: जंगल
1: और
0: है, तो जानवर जो हैं पानी की तलाश में भटकते हुए कभी
1: जी
0: गांवों में
1: सर
0: कभी कस्बों में पहुँच ही जाया करते हैं।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और साथ ही शिकार का पीछा करते करते सर बारहसिंगा हो गया, हिरण हो गया। हाँ ये कारण जिम्मेदार है सर
0: और
1: जी।
0: कान्हा किसली की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी दुनिया में अगर जो 12 सिंगे होते हैं वो केवल वहीं पाए जाते हैं,
1: जी सर
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमने सुना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: जी, और 12 सिंगों से एक बहुत ही खूबसूरत एक द्वार भी बनाया गया है कान्हा किसली के उद्यान
1: जी
0: में।
1: सर जी सर जी, मुक्की गेट के नाम से
0: जी
1: भी
0: हाँ
1: एक
0: जी हाँ जी
1: बात
0: हाँ
1: है सर जी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: तो चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आज का जो कार्यक्रम है, फ़ोन करें गीत सुने हैं, तो आपकी
1: यस
0: पसंद का गीत भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। बताइए क्या
1: सर,
0: सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत सुनने से पहले मैं अपने भाई का नाम बताना चाहता हूँ सर। सर मेरा बड़ा भाई है श्रीमान ध्रुवाराम साहू जी, वो भी आकाशवाणी भोपाल के नियमित श्रोता है सर जी। जी सर, आज मैं प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हुई है सर, तो हाथी मेरा साथी फिल्म का गीत है सर, नफरत की दुनिया को छोड़कर वाला।
0: अरे वाह,
1: जी सर, अब प्रकृति की
0: बहुत
1: बात
0: ही
1: हुई है सर, मैं
0: खूबसूरत
1: कहना
0: गीत
1: चाह
0: है, रफ़ी साहब का गाया हुआ है।
1: हाँ सर, मैं सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा सर कि अभी क्या है सर, कुछ दिनों बाद हमें वर्षा का देखने मिलेगा सर, तो मैं चाहता हूँ सर हर एक श्रोता कम से कम सर 10 पेड़ लगाए, ना सिर्फ पेड़ लगाए सर बल्कि उनके एक बच्चे की तरह देखभाल करे आगामी 5 साल तक। अगर वो सफलता मिल गई सर, तो वो जो है जिस तरह से अग्नि पुराण में भी कहा गया है सर कि एक जो पेड़ होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है सर, एक समय पुत्र बाद परेशान करता है लेकिन जो पेड़ है वो हमेशा आपको उपकार करता है सर।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है। इस बात को हम सब अपने जीवन में उतारें तो ये धरती जो इस तरह तप रही है, इसका माहौल ऐसा नहीं होगा।
1: जी सर जी
0: इस
1: बिल्कुल
0: धरती को हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खूबसूरत बनाकर, बहुत सुंदर बनाकर, जिस तरह हमें मिली थी उसी तरह हम उन्हें सौंप कर जा सकते हैं। आपने एक अच्छी बात कही है, इस बात का परिणाम भी अच्छा निकले, इसी कामना के साथ आपको हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते सर।
1: जी।
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी, हम भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे सर?
1: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
0: अच्छा जी, नमस्कार सर। डबल से
1: नमस्कार जी, नमस्कार। किन से हमारी बात हो रही है?
0: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ सर, पालदाना का, इंदौर से
1: अच्छा जी, हसीना भी। कैसे
0: जी।
1: हैं आप?
0: अच्छे सर
1: इंदौर से बोल रहे हैं आप?
0: जी, आपके लिए शायरी बोल दूँ सर। इस गर्मी में
1: हाँ
0: थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ, जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
1: हसीना भी, आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी से।
0: जी, बहुत लंबे समय से जुड़े सर। वो पहले जो चुटकुले आते थे ना सर, उसमें भी भेजते थे हम। और पहले फोन इन कार्यक्रम 1 बजे आता था सर, सवा 1 बजे, जो अरविंद सोनी जी प्रस्तुत करते थे उसको। SMS का भी आता था 12 बजे सर।
1: अच्छा जी, आपको पूरी जानकारियां हैं।
0: बहुत सब दूर की जानकारी है सर हमें, मुंबई की भी, यहाँ की भी, आपके यहाँ के भोपाल की भी। हम सब एक ही तो है, आसपास ही तो है सर।
1: चलिए, ये बहुत अच्छा है कि आप सारे केंद्रों से जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं
0: जी, और आपके
1: उनमें।
0: यहाँ सर हमारे लेटर भी 2 महीने से डाले हुए, एक भी लेटर शामिल नहीं हुआ, तो थोड़ा आप छटनी भी कर लिया करो। जैसे इनके आते हैं ना, इनके रोज सलंग दो दो बार आ जाते हैं, 2:30 बजे भी आ जाएगा, 12 बजे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा हमारे भी देख लेना सर।
1: चलिए, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश का जो पत्र आपने भेजा है उस पत्र को हम शामिल कर सकें। आज फ़ोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम के लिए कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
0: सर फिल्म का नाम है रोटी, और गाने के बोले किशोर कुमार की आवाज में,

0: हाँ जी नमस्कार,
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तो बताइए मुन्ना जी, क्या हाल है इन दिनों आपके शहर के?
1: सर बढ़िया है, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल गई है।
0: अच्छा अच्छा। हाँ
1: अभी दो तीन दिन से हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है।
0: चलिए मौसम खुशनुमा हो रहा है धीरे धीरे।
1: हाँ जी सर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से दो शब्द बशीर बद्र साहब के लिए कहना चाहता हूँ सर।
0: जी जी।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: क्या बात।
1: 18,000 से ज्यादा शेर व शायरी लिखने वाले, 60 साल मुशायरों का हिस्सा रहे शहंशाह परम श्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। यूं तो सदा रहने के लिए कोई यहाँ आता नहीं, जिस तरह आप गए उस तरह कोई जाता नहीं।
0: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं बशीर बद्र जी के लिए। उनका ये शेर जो आपने पढ़ा वो तो कालजयी शेर है, रहती दुनिया तक ये शेर रहने वाला है। और ऐसा लगता है आप शेरों शायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं।
1: जी सर।
0: साहित्य में तो काफ़ी
1: पुराने गाना का भी शौक है सर।
0: हाँ चलिए, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। यही कलाएं जो हैं इंसान को इंसान बनाती हैं, इंसानियत के पाठ पढ़ाती हैं।
1: जी सर।
0: बताइए कौन सा गीत इस वक्त आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म में पुष्पांजलि का गीत डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए समर्पित है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
0: मैं भी बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
1: इंदौर से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: मेरा नाम है विवेक व्यास।
1: विवेक व्यास जी
0: जी, और मेरा इस निवास स्थान है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर
1: जी।
0: तो सर मैं जी सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: जी, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ शिवम।
0: अच्छा शिवम जी
1: जी,
0: तो सर मुझे देखिए कल क्या है कि महू में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, तो इसी मतलब खुशी में मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है स्वर्ण सुंदरी और रफी साहब और लता जी की आवाज है और गाने के बोल है कुहू कुहू बोले कोई ऐसा।
1: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश करी है आपने।
0: और सर एक खासियत इस गाने की मैं बताऊं कि ये जो गाना है, इस गाने का चार बार स्केल चेंज होता है। इसका मुख्य राग है सोहनी है ना, और बाद में जो अंतरा है उसमें एक बार ये राग यमन आता है और एक बार बाहर भी आता है।
1: बताइए
0: है ना जी। और आप कहें तो मैं थोड़ा गुनगुना कर आपको बताऊं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बोले कोयलिया। और सर इस गीत के संगीतकार है आरती नारायण जी, ये साउथ के थे और इन्होंने एक ही हिंदी फिल्म में संगीत दिया है।
1: बताइए, एक गीत से भी कोई अपने लिए कितना बड़ा स्थान बना सकता है, उसकी मिसाल ये गीत है।
0: और सर एक निवेदन ये था कि यदि आप इसको लाइव करते सजीव प्रसारण तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं आपको बताऊं सजीव प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले आकाशवाणी भोपाल ने ही की थी और मैं रहने वाला भी भोपाल का ही हूँ, है ना। तो ये उस समय की बात है जब अब्दुल मन्नान खान साहब थे, राजोत्तर जी थे, अनिल मुल्की जी थे, है ना। तो ये पहले लाइव हुआ करता था और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भोपाल ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि आपने इसको रिकॉर्डेड क्यों कर।
1: चलिए, आपकी ये बातें जो हैं हमारे अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे और देखते हैं भविष्य में आपकी इस कामना को भी हो सकता है पूरा किया जाए। फिलहाल
0: सजीव में मजा आएगा और आपका धन्यवाद, आपने मेरा और शामिल इसके लिए धन्यवाद, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, अभी इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। अमरीका ईरान समझौते के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स ने लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर सत्र की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं होगी। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का परिणाम है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12 बजे का ये समय है, समय आपकी फरमाइश का। इस कार्यक्रम में आज आपके बहुत सारे खत और आपके पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूँ मैं, सुनीता सिंह। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रोताओं, इन दिनों मौसम अधूरे वादे सा नजर आ रहा है। निगाहें बादलों की राह तकती हैं, कुछ बूंदें आकर मन को छू जाती हैं, ठंडक दी जाती हैं और फिर धूप अपना साम्राज्य फैला देती है। कुल मिलाकर ये मौसम इंतजार का मौसम है, जिसमें छोटी छोटी खुशियों की आशा है, रिमझिम बूंदों की आशा है, जो ठंडक बनकर जीवन पर छा जाए। तो ये इंतजार रखिए बरकरार। इस बीच आपका इंतजार हम खत्म करते हैं। कुछ मधुर गीतों की फुहार आप तक भेजते हैं आपकी ही फरमाइश पर। आइए सिलसिला शुरू करते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का। श्रोताओं के नाम पहले बताते हैं, उसके बाद गाने की डिटेल्स। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सोनुआ झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। ये चिट्ठी आई हुई है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल जाना ना हमें याद हमारी रखना।

और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद, बबन जोशी। शिवाजी चौक बुराला खुर्द से आदिनाथ बाघ और अमोघ बाघ। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ये चिट्ठी आई हुई है राजकोट से। लिखने वाले श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। गमों की ओस जब भी दिल पर पड़ी है, तुम्हारी याद सूरज बन गई है।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर पारसमणि फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। असद भोपाली का लिखा ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

दिल तेरा दीवाना कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल शैलेंद्र के, धुन शंकर जयकिशन की। अनुरोध आप सबका है, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, प्रमिलागंज आलोट, रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले, आरती जूंधले और भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। एक हुजूम में दिखा जो तेरा अचानक चेहरा तेरा, एक हुजूम में जो दिखा अचानक चेहरा तेरा, दिल ने कहा मेरा ख्वाब यही है, यही हकीकत, यही जिंदगी।

0: अपनी सुबह कीजिए सुहानी गुड मॉर्निंग इंदौर के साथ
1: प्रत्येक सोमवार को सुबह 7:20 पर आकाशवाणी इंदौर से और सुबह 10 बजे विविध भारती इंदौर से जरूर सुनिए
2: गुड मॉर्निंग।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

कन्या साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है। रामू और बामू चोरी छिपे कंपनी के कलपुर्जे बेचने शुरू कर देते हैं। कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना दिया जाता है। ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव रखते हैं। बातचीत टूट जाती है। रामू और बामू को पता चलता है कि रात को ठाकुर साहब के घर कोई औरत चोरी छिपे आती है। उनका शक भृगु की बहन पार्वती पर जाता है। दोनों रात के समय ठाकुर के घर की निगरानी करते हैं और औरत को पकड़ लेते हैं। तभी यशवंत वहां आता है और नारायणी को देखकर चौंक जाता है। अब आज

0: वो क्या है कि
1: देखो रामू और बामू सुनो, तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़ कर आओ।
2: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़ कर
1: जबान संभाल कर बात कर रामू।
3: अरे ठहरो
1: पलवीर स्वामी तुम?
3: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो ठाकुर साहब के घर।
1: हाँ ठीक है चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
0: चल चल भाई चल।
3: ठाकुर साहब। अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया आया है?
3: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो।
3: जी हाँ हम यूनियन के आदमी हैं। और ठीक तरह से जवाब दीजिए, क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
1: बोलिए
5: क्या मतलब?
3: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए, नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए?
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले चार दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
3: चुप, हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो।
1: जवाब दो नारायणी, चुप क्यों हो?
3: मौना स्वीकृति ही लक्षणम। मारो इसे, मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
0: मारो मारो।
1: ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब सुनो, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ।
7: यशवंत बाबू
1: तुम चुप रहो नारायणी, तुम चुप रहो। देखो बलबीर स्वामी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि नारायणी से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
3: अच्छा ठीक है, पहली गलती है इसलिए माफ कर देते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा देना कि

0: कभी ऐसी गलती ना करे, वरना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
1: अब तुम चिंता ना करो बलबीर स्वामी, मैं इसे सब समझा दूंगा। अब चलो नारायणी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। आप

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना ले और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर ले। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों, क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलबीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला, बच्चे बूढ़े जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन मंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है।
0: अब
1: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
0: ठीक है। अरे बलबीर,
1: हाँ,
0: ये कौन आ रहा है?
1: अरे अरे कालू राम, तुम इस वक्त यहाँ?
2: अरे हाँ बलवीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
0: हाँ,
1: अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
0: हाँ,
1: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
0: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
1: परसों सुबह। हाँ, एक बात और।
0: अरे अब कौन सी बात रह गई?
1: देखो, शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
0: लेकिन बलबीर, इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
2: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
0: क्या?
3: दादी माँ, दादी माँ।
4: हाँ बेटी।
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी,
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ, अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
4: पार्वती,
3: मैं मरना नहीं चाहती दादी, मैं मरना नहीं चाहती।
4: पार्वती,
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: अब तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार, अपनी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को, जिसने हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
3: बापू मत रो, बापू मत रो। दादी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी।

0: अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो बापू, मत रो दादी।
1: Oh,

0: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है। मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
1: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। हैं? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
0: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी। पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने यह बिल पास किया है, लेकिन कंपनी 1977 में यह बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
1: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
0: अब
1: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझो तुम।
0: शास्त्री जी, सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
1: आ तो रहा है, तो फिर
0: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
1: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती, समझे?
0: लेकिन शास्त्री जी।
1: लेकिन कुछ नहीं, दिखाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वालों को भी जानने दो। अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट। आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
0: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है, ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है, वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
0: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
2: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
3: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
2: लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या इंटरप्रेटर कर रहे हो?
3: अरे होगा कोई कानून? सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
2: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
3: हाँ
5: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है, समझ से काम लो, समझ से।
0: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
6: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
7: चलो
6: अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
0: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
6: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
0: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी।
6: अच्छा,
0: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी। ये कंपनी का कानून सम्मत काम है, उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
6: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
0: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
6: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी। मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
0: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व? उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
6: हाँ।
0: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
6: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे। और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
0: ठीक कहते हो बलवीर।

कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर कांटा हो गई हूं। मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। हे भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह।

0: क्या हड़ताल हम लोगों की जिंदगी अब लील जाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा सिर चकराने लगा है। एक कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं रही। क्या करूं मैं, क्या करूं? कहां जाऊं? भूख भी तो लगी है ना। याद आया, परसों कच्चे तरबूज को सूखे कांटों से ढककर आई थी मैं, ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। हाँ, चलकर तरबूज खाती हूँ। हाँ, कुछ तो भूख मिटेगी। जल्दी चलूँ, कहीं कोई दूसरा या कोई जानवर ही ना खा गया हो। हाँ, मुझे जल्दी चलना चाहिए। अरे ये क्या, तरबूज तो कोई खा गया। या तो तरबूज के छिलकों के खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं? पता नहीं किसने खाया होगा मेरे इस तरबूज को। किसने खाया होगा? अरे अरे, यहां तो बसुमती काकी बैठी हुई है। जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी? आजा, यहाँ बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। है, बहुत दिन के बाद पेट में गया। दो चार दिन और जी लेंगे हम। क्या बात है नारायणी? अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है?
0: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बाहर रोज रोज
1: की बात कर रही है नारायणी। तू
0: मेरे तरबूज
1: नारायणी? अरे हम तेरा दुख समझते हैं। हाय हाय हाय हाय,
2: देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है।
0: काके
2: नारायणी,
0: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने? क्यों?
1: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है। क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई? नारायणी, पेट में बच्चा बच्चा है क्या?
0: काकी,
1: अरे सुन,
2: हम छठवें महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
3: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काटकर उसका बीज निकाला जाता है।
1: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
3: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी।
2: बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ,
3: तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, हैं?
1: अरे कंवर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
0: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोंट दूंगी मैं।
1: अरे नारायणी,
4: अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
0: क्या?
4: तू चिंता न करना रायनी, हमको सब याद है। अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल पर हमारा काम लगा हुआ था। बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश, और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता। तब हम साहब के कपड़े धोते थे, उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे, और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था। हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था, और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
0: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू?
4: ये बकबक नहीं है रानी, अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे। हाँ, और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी। हाँ
0: काकी, तुम सच कह रही हो ना?
4: और नहीं तो क्या, अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
0: इसका मतलब आप मानती हैं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
4: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
0: काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी मुझे माफ कर दो।
4: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी, ये भूख जो करवाए सो कम है। अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
0: काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना सब के सब मुझे गलत समझते हैं काकी, गलत समझते हैं।
1: नारायणी, ये नारा सुन रही है तू? होशियार रहे, ये नारा किसी का नहीं है।
4: अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी।

0: मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख, अरे हमारे बालक देख, अरे अपने लड़के की हालत देख, ये सब हालत हड़ताल और नारों की देन है।
1: हाँ काकी,
0: आज हम पर कुत्ते भौंकते हैं, बालक पत्थर मारते हैं, अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा, ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख के हड़ताल करते।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आयोजित मास्टरमाइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रवीन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट के मंदाकिनी और माधकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं महक गुप्ता और स्वास्थ्य दर्पण में एक बार फिर हम हाजिर हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली को समर्पित रहता है। श्रोताओं, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि रात बिरात घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या फिर सेहत को लेकर अगर कोई सवाल मन में आ जाए जिसका जवाब तुरंत चाहिए हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कब जाएं। हर कोई बार बार छोटी मोटी बीमारियों के लिए तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या फिर सुदूर इलाकों में रहने के कारण उनके लिए अस्पताल तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे असमंजस में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे सलाह लें। इसी गंभीर समस्या का स्थायी और सरल समाधान करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवाओं को शुरू किया। ये नंबर्स केवल अंकों का एक समूह नहीं है, बल्कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के समय एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। तो जल्दी से कागज़ कलम उठाइए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सेवाओं में सबसे प्रमुख और उपयोगी नंबर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104। यदि आप किसी भी साधारण बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मामूली बुखार, उल्टी या पेट दर्द से परेशान हैं, तो तुरंत अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से 104 यानी 104 नंबर डायल कर सकते हैं। इस नंबर पर 24 घंटे योग्य चिकित्सा सलाहकार, नर्स, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करके आपको उचित प्राथमिक उपचार तथा दवाइयों का परामर्श दे सकते हैं। इसके साथ ही इस हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य जानकारियों के बारे में, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना और अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आपातकालीन और संकट की स्थिति के लिए देश भर में 112 और 108 जैसी बेहतरीन एम्बुलेंस और राहत सेवाएँ भी पूरी जोश शोर से काम कर रही हैं। जहां 108 नंबर मुख्य रूप से मुफ्त अस्पतालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए जाना जाता है, जो गंभीर मरीजों या दुर्घटना में जूझ रहे लोगों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाती है, वहीं 112 ऐसी एकीकृत अस्पतालीन नंबर है जो देश के किसी भी कोने में आपको तुरंत चिकित्सा, पुलिस या फायर ब्रिगेड की मदद एक साथ पहुंचाने में सक्षम है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही नहीं, आजकल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी समाज में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर, टेली मानस हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। ये नंबर है 14416। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा है, लगातार तनाव में है, या किसी को अपने मन की बात साझा करनी हो, तो वो इस नंबर पर कॉल करके अनुभवी मनोवैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से मुफ्त और पूरी तरह गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ ही डिजिटल इंडिया के इस दौर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हेल्पलाइन नंबर है 14477। मैं नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 14477। ये भी लोगों को बहुत काम आ रही है, जहाँ आप अपनी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल आईडी, ये सभी एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी सेवाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी तरह निशुल्क हैं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, ताकि देश भर के नागरिक अपनी भाषा में खुलकर अपनी बात कह सकें और मदद प्राप्त कर सकें, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये हेल्पलाइन नंबर्स हमें बताते हैं कि एक साधारण सा फ़ोन नंबर इस लायक है कि वो हर स्वास्थ्य सेवा को आपके दरवाजे तक ला सके। उम्मीद है कि आपने ये सभी नंबर्स ज़रूर नोट किए होंगे, ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आ सकें। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण में अब वक्त हो गया है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है योग, स्वस्थ जीवन की आधारशिला। वार्ताकार हैं गोविंद सिंह चौहान।
1: स्वस्थ भारत का विचार केवल अस्पतालों दवाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी आधारशिला है जिस पर देश का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति टिकी है। यदि नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं, शिक्षा बेहतर ग्रहण करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ भारत का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति। स्वस्थ भारत की असली आधारशिला यौगिक जीवन शैली में है। महर्षि पाताल जी ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थ सिद्ध प्राणायामः, अर्थात आसन सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक से श्वास लें, बाएं नाक से छोड़े, बाएं से ले, दाएं से श्वास छोड़े। अनुपात इसका रहेगा 1:2 या फिर 1:4:2। लाभ इसके क्या क्या हैं? नाड़ी शुद्धि, मन शांत, रक्तचाप संतुलित, तनाव अनिद्रा में लाभ मिलता है। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है। बहुत धीरे अभ्यास करें, हृदय से संबंधित रोगी कुंभक ना लगाए। दूसरा है प्राणायाम में कपालभाति, नाक से श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर करें, श्वास लेना सहज रूप से। लाभ इसके हैं, पेट की चर्बी घटती है कपालभाति प्राणायाम से, पाचन तेज, फेफड़े शुद्ध होते हैं, मस्तिष्क सक्रिय तथा कफ दोषों का नाश होता है। इसकी सीमाएं होती है, हाई बीपी हार्ड पेशेंट तथा गर्भवती महिलाएं ना करें, अल्सर हार्निया वाले भी ना करें, गर्मी के दिनों में कम करें। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धोकनी जैसे तेज श्वास लेना छोड़ना, 20 बार करके कुंभक लगाएं। भ्रामरी प्राणायाम ये है चौथा, आंख कान बंद करके भंवरे जैसी मधुर गुंजन करें। इसके लाभ तुरंत तनाव अवसाद खत्म, माइग्रेशन में राहत, क्रोध चिंता शांत तथा उच्च रक्तचाप में लाभ तथा नींद अच्छी आती है। पांचवा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, गले को हल्का सिकुड़कर खराटे जैसी आवाज के साथ श्वास लेना और छोड़ना, थायराइड में लाभ प्राप्त होता है, गला फेफड़ा मजबूत तथा मन एकाग्र, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। इसकी सीमाएं हैं, बीपी वाले सावधानी से करें तथा कुंभक न लगाए। छठा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम अथवा शीतकारी प्राणायाम, जीभ को नलीदार बनाकर या दांतों से श्वास अंदर खींचे तथा नाक से छोड़े। इस प्राणायाम के जो लाभ है, शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी जलन शांत, बीपी सामान्य होता है तथा भूख प्यास में नियंत्रण स्थापित होता है। सूर्यवेदन प्राणायाम, केवल दाएं नाक से श्वास लेना तथा बाएं से छोड़ना। इस सूर्यवेदन प्राणायाम के लाभ है कि शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सुस्ती कफ दूर होता है, पाचन तेज होता है तथा लो बीपी में फायदा होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, हाई बीपी हृदय रोगी पित्त प्रकृति वाले इस अभ्यास को ना करें। आठवां प्राणायाम है चंद्रभेदन प्राणायाम, इसमें केवल बाएं नाक से श्वास ले तथा दाएं से श्वास को छोड़ना है। इसके लाभ है शरीर को शीतलता, हाई बीपी में लाभ, पित्त शांत तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। चंद्रभेदन प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है, लो बीपी सर्दी जुकाम अस्थमा वाले इस अभ्यास को ना करें। प्राणायाम के जो यौगिक लाभ बताए हैं उसमें फेफड़ों की क्षमता 3 से 5 गुना बढ़ती है तथा ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है, हृदय मजबूत, रक्तचाप नियंत्रित तथा कोलेस्ट्रॉल घटता है, पाचन तंत्र लीवर किडनी सक्रिय, डायबिटीज मोटापा कब्ज में लाभ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, 80% रोग श्वास दोष से होते हैं, हार्मोन संतुलन, थायराइड PCOD तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के मानसिक लाभ, तनाव चिंता डिप्रेशन भ्रामरी 5 मिनट में असर देता है, एकाग्रता स्मृति निर्माण लेने की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक विचार रुकते हैं, मन प्रसन्न रहता है, क्रोध चिड़चिड़ापन ठीक होता है। आध्यात्मिक लाभ इसके बताएं, नाड़ी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण की तैयारी, चित्त शांत होकर ध्यान में प्रवेश आसान होता है, प्रत्याहार सिद्ध होता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम करने की पूर्व सावधानियां हमें कुछ बरतनी होती है, खाली पेट जरूरी होना चाहिए, भोजन के 4 घंटे पहले ही करें, सुबह का समय प्राणायाम के लिए अति उत्तम माना गया है। प्राणायाम गुरु के सानिध्य में सीखे कुंभक वाले प्राणायाम गलत करने से हानि की संभावना रहती है। और रोग के अनुसार चुनाव, हाई बीपी वाले भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्यभेदन प्राणायाम ना करें। लो बीपी वाले शीतली चंद्रभेदन प्राणायाम ना करें। शुरू में 5-5 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, जबरदस्ती श्वास ना रोकें। वर्जित स्थितियां, बुखार, चक्कर, ऑपरेशन के बाद गर्भावस्था, मासिक धर्म में कुंभक ना करें, प्राणायाम ना करें। शांत जगह हो, पंखे तथा एसी की सीधी हवा में ना करें। क्रम इसका रहेगा, पहले षटकर्म हो, उसके बाद आसन करें, आसन के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ध्यान करें और फिर सीधे प्राणायाम ना करें। निष्कर्ष ये है कि प्राणायाम स्वस्थ भारत की सांस है, यह दवा नहीं, दवा की जरूरत को खत्म करने का विज्ञान है। महर्षि पातंजलि ने आसनों को स्थिर सुखम आसनम कहा है, जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखी हो। बाद में हठयोग में 84 लाख योनिया के प्रतीक 84 प्रमुख आसन बताए गए हैं। आसनों को मोटे तौर पर 7 भागों में बांट सकते हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, कटिचक्रासन, गरुड़ासन, नटराजासन। घुटने, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं, श्वास गहरी होती है, आलस दूर होता है, स्फूर्ति आती है। इन खड़े होकर आसनों में कुछ सीमाएं भी होती है। घुटने में तेज वर्टिगो की, हाई बीपी, त्रिकोणासन में सावधानी करें। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में संतुलन वाले आसन ना करें। बैठकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन। ध्यान के लिए उत्तम आसन, रीढ़ सीधी रहती है, पाचन तंत्र मजबूत। वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। रीढ़ में लचीलापन, साइटिका में आराम मिलता है, मन शांत होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं हैं, जैसे घुटने टखने की चोट में पद्मासन ना करें, पाइल्स फिशर में वज्रासन देर तक ना करें, स्लिप डिस्क में तीव्र मरोड़ वाले आसन वर्जित है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर है भुजंगासन, शल्वासन, धनुरासन, मकरासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के योगिक लाभ, जैसे रीढ़ की हड्डी लचीली, कमर दर्द में राहत मिलती है, पेट के अंगों की मालिश होती है, कब्ज अपच दूर, फेफड़े हृदय सक्रिय होते, थायराइड ग्रंथि संतुलित होती है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं होती है, जैसे हार्निया, अल्सर, पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें। गर्भावस्था में पूरी तरह वर्जित है। हाई बीपी, हृदय के रोग में भुजंगासन धीरे धीरे करें। चौथा जो भाग है, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, उत्तानपादासन, चक्रपादासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, रक्त संचार सिर की तरफ बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है, रीढ़ और गर्दन का तनाव दूर होता है, गैस, कब्ज, मोटापे में बहुत लाभ होता है। इनकी सीमाएं, सर्वांगासन, हलासन, हाई बीपी, सर्वाइकल, चक्कर, हृदय रोग, गर्भावस्था में ना करें। ग्लूकोमा, रेटिना समस्या में उल्टे आसन वर्जित है। गर्दन में दर्द हो तो तकिया लगाकर करें। पांचवा भाग है आगे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, जानुशीर्षासन, बलासन, उग्रासन। इन आसनों के यौगिक लाभ, पैर की पीछे की खुलती हुई लचीलापन, पाचन अंगों पर दबाव, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज में लाभकारी। इन आसनों की कुछ सीमाएं होती है, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका में झटके से आगे ना झुके, अस्थमा अटैक के समय ना करें, अल्सर दस्त में पेट दबाने वाले आसन ना करें। छठा है पीछे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर जैसे चक्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन। पीछे झुकने वाले आसनों के यौगिक लाभ, छाती खुलती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, अस्थमा में लाभ होता है, रीढ़ को उल्टी दिशा में खिंचाव, कमर दर्द ठीक, एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय तथा सुस्ती दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कमर दर्द तीव्र हो तो ना करें, हार्निया, हाई बीपी, हृदय के रोग, वर्डिगो में वर्जित है, गर्भावस्था में ना करें। सातवां और अंतिम भाग जो है वो संतुलन और विपरीत करणी आसन, जैसे उदाहरण के तौर पर शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बकासन, पादांगुष्ट आसन, तोलांगुल आसन, इन आसनों के योगिक लाभ, हाथ कंधे बहुत मजबूत होते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह एकाग्रता, स्मृति तेज होती है, हार्मोन संतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है, पाचन तेज, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इन आसनों की सीमा है, जैसे शीर्षासन सबसे जोखिम वाला है, बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करें। हाई बीपी, हृदय रोग, गर्दन दर्द, चक्कर, आंख की बीमारी में वर्जित है, महावारी गर्भावस्था में ना करें। अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ भारत की आधारशिला योग है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक स्वस्थ भारत की आधारशिला रखेंगे। धन्यवाद।
0: श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का योग पर आधारित ये भेंटवार्ता पसंद आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, विज्ञान की प्रगति अब चिकित्सा जगत को इतना क्रांतिकारी मोड़ पर ले आई है जहां तकनीक हमारी रोजमर्रा की आदतों से हमारी सेहत का हाल जान सकती है। जी हां, स्वास्थ्य और तकनीक में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत तकनीक की जो आने वाले समय में बीमारियों की पहचान और उसके निदान का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी आवाज आधारित स्वास्थ्य तकनीक। श्रोताओं, हम सभी का ये सामान्य अनुभव है कि जब भी हम बीमार होते हैं अक्सर हमारी आवाज भारी हो जाती है, बैठ जाती है या उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हमारी माँ या घर के बुजुर्ग अक्सर सिर्फ हमारी आवाज सुनकर ही तुरंत पहचान लेते हैं कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसी प्राकृतिक और जैविक सिद्धांत के आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जोड़कर तकनीक बनाई गई है। वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के बोलने के तरीके, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, पिच, बोलने का तरीका, तीव्रता और शब्दों के बीच के सूक्ष्म ठहराव को बिल्कुल बारीकी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए विश्लेषण करके ये बता सकती है कि कौन सी बीमारी होने की संभावना है। विज्ञान की भाषा में इसे वोकल बायोमार्कर्स या आवाज़ के जैविक लक्षण भी कहा जाता है। ये लक्षण इतने महीन और सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य इंसानी कान से शायद इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन कंप्यूटर

व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव तो नहीं है, केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को भी वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से समझ सकती है इससे पहले कि बाकी लक्षण दिखाई देने लगें। इसी तरह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक कफ जैसी फेफड़ों की बीमारियों में भी मरीज के सांस लेने का तरीका बदल जाता है, तो उसकी आवाज़ की तरंगों को ये बहुत अच्छे से समझकर डॉक्टर की मदद कर सकता है, एक ग्राफ बनाकर दे सकता है कि इस पेशेंट के लक्षणों का निदान किस तरह किया जा सकता है। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गैर आक्रामक है, यानी कोई भी शरीर में दर्द नहीं होता, कोई सुई नहीं लगती, किसी मशीन के अंदर जाकर घंटों तक बैठना नहीं पड़ता, बस आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये बहुत अच्छे से साफ तौर पर बताया है कि ये तकनीक मुख्य रूप से शुरुआती स्क्रीनिंग और बीमारी की निगरानी के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर का विकल्प नहीं है, बस डॉक्टरों का काम आसान करने के लिए बनाया गया है। श्रोताओं, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के आखिरी गीत का। श्रोताओं माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की बेहद कमी है, तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा सा समापन की ओर लेकर चलते हैं। आज के स्वास्थ्य दर्पण में हमने जाना कि जहां एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर संकट के समय में तुरंत मुफ्त मदद हमें पहुंचा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीकों से मिलकर भविष्य में स्वास्थ्य को और ज़्यादा सुलभ और आसान और सस्ता बना सकती है। श्रोताओं, इसी के साथ आज के स्वास्थ्य दर्पण में बस इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे यानी महक गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमित गंगेले के स्वर में बुंदेली लोक भजन।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए राजेश श्रीवास्तव के स्वर में गजल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत था फिल्म सत्ते पे सत्ता से, और जिसके लिए आवाज थी आशा भोसले, दिलराज कौर की। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीत था डी बर्मन का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हमारी इसी सभा में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आपकी पसंदीदा गीतों पर आधारित, दोपहर 2:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही जिसके हकदार हम हैं।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन आगामी तीन से चार दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा जाननी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहाँ करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
5: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
6: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के

0: एक गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। महादेव घाट अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म कुदरत का गीत, जिसके लिए आवाज़ है परवीन सुल्ताना की। गीतकार है मजरू और संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा। कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी। इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है गुड्डी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है वाणी जयराम की, गीतकार है गुलजार और संगीत है वसंत देसाई का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, औरंगाबाद से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया। इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहेब बीबी और गुलाम का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीत है हेमंत कुमार का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का, और इसको सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, भाटापारा दतरंगी, छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी श्रोता ने साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दिल अपना प्रीत पराई का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम बोड़खे। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है मेरे सनम इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है आशा भोसले की। गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और संगीत है ओपी नैयर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह परिवार, दीक्षा कुश मूणत पवार, और इंदौर से हैं अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, रितक कुणाल, केतन बामनिया, और ये हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म चमेली का गीत, जिसके लिए आवाज़ है सुनिधि चौहान की ही, और गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है संदेश शांडिल का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: बावनवां जी सेवन शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने 107 दिनों से जारी संघर्ष की समाप्ति के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर आधारित ध्यान केंद्रित किया है। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर और 2 गेंद में 265 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर आउट हुए। भारत की तरफ से सूर्यांश शिडगे ने 72 रन की पारी खेली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33 और शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति ये कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुचिरा काले का राग केदार में ख्याल गायन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज की शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:03 होने को हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी। तो दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। तुम कुछ कह रही थी मार्गेश?
0: हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज है सोमवार और आज हम करते हैं कुछ बातें और कुछ की। तो आज की जो बातें हैं वो मानसिक स्वास्थ्य और युवा से जुड़ी हुई हमने बहुत सारी आज हम करने वाले हैं, और उसके साथ गीत भी हम वैसे ही सुनेंगे।
1: साथ ही दोस्तों, आज जो है 15 जून है और आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन भी मनाए जाते हैं, तो उन दिनों के बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना अब हम हमारे सवालों का जो क्रम है उसे शुरू करें।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज भी हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है।
1: और जो आज का दूसरा प्रश्न है वो ये है कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सवालों के उत्तर को ढूंढेंगे, और तब तक हमारे साथ बने रहिए और सुनिए हमारे कार्यक्रम का आज का पहला गीत।

0: तो मार्गिशा, ये तो तुम जानती हो कि सुबह उठकर अखबार पढ़ना मेरी आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया के बारे में जानने को मिलता है, सुबह सुबह उठकर कुछ पढ़ने को मिलता है। फ़ोन से हटकर हम एक्चुअली किताब जैसी किसी चीज़ को या अखबार को पढ़ रहे होते हैं जिसमें अक्षर दिखते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता
1: है। ये आदत भी बहुत अच्छी है वैसे माधवी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी आदत डल जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने खैर बचपन में ही डाल दी थी, पर देर आए दुरुस्त आए, आप लोग रोज़ अखबार पढ़ें और बहुत मेंटल पीस मिलता है मुझे। ऑफ कोर्स खबरें ऐसी नहीं होती है कि सुकून दें, लेकिन हाँ, फ़ोन से बेहतर अखबार से शुरुआत करें तो अच्छा होता है। तो उसी के चलते आज सुबह मैंने अखबार में बहुत ही अच्छे दिन के बारे में पढ़ा जो कि आज मनाया जाता है। 15 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और ये सुनकर मेरे मन में कई विचार आने लग गए थे।
1: सही कहा तुमने माधवी, आज का दिन बहुत ही खास है। देखा जाए तो ये दिन हमें उन बुजुर्गों के बारे में सोचने का अवसर देता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन कई बार तुमने ये देखा होगा कि उन्हें वही सम्मान, वही देखभाल नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं।
0: आज के ज़माने में तो ये बिल्कुल सही बात है जो तुम कह रही हो, क्योंकि वाकई जो वो डिज़र्व करते हैं ये जनरेशन उनको वो नहीं दे पा रही है। पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, और सच कहूँ तो जब मैं अपने दादा दादी को की बातों को या उनको याद करती हूँ तो उनको देखकर, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि उनके पास अनुभवों का खजाना है। उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष, उनकी सीखें हर दिन हमें कुछ न कुछ नया ज़रूर सिखाती हैं।
1: उफ माधवी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बुजुर्ग किसी भी परिवार की ना जड़ें होते हैं, यानी किसी भी घर की फाउंडेशन होते हैं। जिस तरह किसी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी तरह से किसी भी फैमिली की मजबूती उसके

0: बुजुर्गों के अनुभव, उनके आशीर्वाद और उनकी जो अनुभव है और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पर निर्भर करती है।
1: सही बात कह रही हो तुम, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। उन्हें सिर्फ दवाइयाँ और सुविधाएं नहीं बल्कि समय, सम्मान और बहुत सारे अपनापन की बहुत ज़रूरत होती है।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, उपेक्षा या अनादर एक गंभीर सामाजिक समस्या है।
1: सही कह रही हो तुम। और पता है खास बात तो यह है कि दुर्व्यवहार सिर्फ शारीरिक नहीं होता। क्या आप हमारी बात को सोच के सुनकर ये सोचें कि यार हमने तो कभी मारा नहीं, कुछ फिजिकल नहीं किया किसी तरह, नहीं कभी किसी की बातों को नज़रअंदाज करना, उनको अकेला छोड़ देना, उनकी भावनाओं की कदर ना करना, ये सब उनको उतना ही दुख पहुँचाता है जितना कोई फिजिकल दुख पहुँचा सकता है।
0: कई बार कोई कठोर शब्द कह देना, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना, उनको चाहते हुए भी उनके साथ समय व्यतीत नहीं करना और उनको कई बार बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना कि वो परिवार का हिस्सा ही नहीं है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब दुनिया की समझ नहीं रही और उनकी बताई हुई जो मॉरल्स हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना, ये भी बुरा व्यवहार ही कहलाता है।
1: और सोचो, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें जीवन की राह दिखाई, उन्हें अपने जीवन के इस पड़ाव पर हमारे सहारे की कितनी ज़रूरत होती है।
0: और यही तो सबसे ज़्यादा इमोशनल बात है कि बचपन में हम उनके सहारे थे और उम्र बढ़ने के साथ वो हमारे सहारे की उम्मीद करते हैं।
1: मुझे अपने दादाजी की एक बात हमेशा याद रहती है। वे कहते थे, बच्चे घर की रौनक होते हैं लेकिन बुजुर्ग घर की पहचान होते हैं।
0: उफ माधवी, कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने। वास्तव में बुजुर्गों के अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनकी सलाह कई बार हमें ऐसी गलतियों से बचा लेती है जो हम अनुभव किसी भी कारण से नहीं ले सकते हैं।
1: और युवाओं के लिए खास करके ये दिन आज बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें संवेदनशीलता सिखाता है, सम्मान करने की बात को और गहराई से समझने की कोशिश करना सिखाता है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का महत्व समझाता है।
0: और दोस्तों, इसी कारण से ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे दादा दादी जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनसे बातें करें और उनके मॉरल्स को कभी भी ना भूलें। इसी के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, आज एक और बहुत ही सुंदर सा, बढ़िया सा और महत्वपूर्ण सा दिवस है, और इस दिवस का नाम है ग्लोबल विंड डे। ये भी आज ही के दिन यानी 15 जून को मनाया जाता है। और कितनी रोचक बात है ना कि पूरे दिन को हवा की शक्ति को समर्पित कर दिया गया है।
1: हम रोज हवा को महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये बैठ के सोचते हैं कि यही हवा दुनिया को चला रही है, यही हवा दुनिया को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: सच कहूँ तो जब भी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और तेज हवा चलती है, तब बस उसका आनंद लिया जाता है। और कितना मजा आता है, आज समझ में आ रहा है कि प्रकृति की वही शक्तिशाली बिजली पैदा करने वाली हवा कितनी काम आती है।
1: और यही इस दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लोगों को ये बताना कि पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी भविष्य की सबसे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा में से एक हो सकती है।
0: तो आज आप लोग ये जानकर बहुत आश्चर्य होंगे कि सिर्फ हवा की गति से विशाल और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हवा जो है वो हजारों घरों तक बिजली पहुंचाने का काम चुटकियों में कर देती है।
1: और माधवी, तुम जानती हो इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों की तुलना में पवन ऊर्जा पर्यावरण के लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकती।
0: आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तब ऐसी स्वच्छ ऊर्जा की जो स्रोत हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये तो हम और आप जानते ही हैं।
1: एकदम सही कहा तुमने। वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, और पवन ऊर्जा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: एक और बात है, ग्लोबल विंड डे सिर्फ ऊर्जा के बारे में बात करने के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भविष्य की जिम्मेदारी के बारे में बताने के जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा स्टैंड हो सकता है। कि ऐसा होता है ना कि कोई एक फील्ड मिल जानी चाहिए, कोई एक स्टेज मिल जाना चाहिए जहाँ आप अपनी बात व्यक्त कर सको। तो शायद इस दिन को भी आज के दिन इसीलिए रखा गया है ताकि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म हो कि
1: सही
0: हम
1: कहा।
0: इस एनर्जी के बारे में बात कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें और खुद भी इसके बारे में जान सकें।
1: दोस्तों, अगर हम आज स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और स्वच्छ पृथ्वी दे पाएंगे।
0: और जरा सोचो, हवा तो प्रकृति का ऐसा उपहार है जो लगातार उपलब्ध है। सूरज की रोशनी की तरह ये भी प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म ही नहीं किया जा सकता।
1: और इसी वजह से दुनिया के कई देश बड़े बड़े विंड फार्म्स बना रहे हैं। समुद्र के किनारे और खुले मैदानों में लगी विशाल पवनचक्कियां आज आधुनिक विकास का प्रतीक बन चुकी हैं।
0: और सच कहूँ तो मुझे उन ऊंची ऊंची पवन चक्कियों को देखकर हमेशा आश्चर्य होता है। पवन चक्कियाँ यानी कि विंड मिल्स। तो दोस्तों, विंड मिल्स, जब हम बड़े बड़े विंड मिल्स देखते हैं रास्ते में, किसी रोड ट्रिप के बीच में या किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के चक्कर में, तो वो कितनी सुंदर लगती हैं। और ये सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और टेक्निक, इन दोनों के बीच में एक खूबसूरत सी साझेदारी हो गई है।
1: हाँ, सही कहा माधवी। जब भी हम ट्रेवल करते हैं और विंड मिल्स को देखते हैं तो दूर से तो बड़ी छोटी छोटी सी दिखती हैं, लेकिन जब पास जाके देखो तो वो बहुत विशाल होती हैं। और देखा जाए तो युवाओं के लिए भी ये विशेष बहुत ही प्रेरणादायक है दोस्तों। आज इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसमें विंड एनर्जी में भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। तो जो युवा आज रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: और शायद यही वजह है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अलग अलग इवेंट्स में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, इस सब की बातें होनी चाहिए, और इसके बारे में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है।
0: और ऐसा भी मुझे लगता है मार्गशीर्ष, कि जो छोटे छोटे कदम होते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हम ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने रहें, तो भी हम इस बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं।
1: दोस्तों, ग्लोबल विंड डे हमें सिर्फ हवा की ताकत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर विकास करना ही सच्ची प्रगति है।
0: और शायद यही इस दिन का सबसे सुंदर संदेश है। प्रकृति हमारी साथी है और हमें इसके संसाधनों को समझदारी से उपयोग करना चाहिए, और उनका साथ हमारे साथ बना रहे इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए।

0: दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करेंगे युवा और मानसिक स्वास्थ्य की। देखा जाए तो आज का युवा अपनी मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, लेकिन मज़े की बात पता है क्या है कि अवेयर होने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए, ऐसी कौन सी चीज़ों से दूरी बनाई जाए ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे।
1: सही कह रही हो, युवा ये तो जानता है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसका ध्यान कैसे रखना है और उसमें सुधार कैसे लाना है ये उन्हें नहीं पता।
0: और कई सारे युवाओं को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा और थोड़ा डिसअपॉइंट भी होंगे, लेकिन हाँ, कई सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि सोशल मीडिया युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर डाल सकता है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो असल दुनिया से काफ़ी अलग और बहुत ज़्यादा बेहतर होती है,
1: और इसी के कारण सभी के मन में कंपैरिजन प्रिविलेज और जजमेंट जैसी भावनाएं आ जाती है। हम जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी ही अंदर या तो किसी चीज़ की कमी रह गई होगी, या कि हमें ऐसी दुनिया नहीं देख पा रहे हैं, या ऐसी दुनिया नहीं मिल पा रही है जैसी ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं।
0: लेकिन असल में जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो तो बस 1% हिस्सा है। असल दुनिया का जो ड्रीम लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। उसमें स्ट्रगल्स होते हैं, कंपटीशन होता है, और सबसे ज़्यादा होता है इमोशनल इम्बैलेंस।
1: बिल्कुल, इमोशनल इम्बैलेंस या अपने इमोशंस को ना समझ पाना हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वह इसलिए क्योंकि हम हमारी इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, और उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि हम किसी कारण से हम ऐसा क्यों फील

0: असल ज़िंदगी में हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, हर किसी को डिसीजन लेने में तकलीफ़ होती है, हर किसी को अपने गोल अचीव करने में टाइम लगता है, और इसीलिए हमें खुद को अंडर एस्टिमेट करना या खुद को गलत समझना, खुद को कम समझना बंद कर देना चाहिए।
1: और इसकी शुरुआत होती है खुद को एक्सेप्ट करने से, खुद की स्ट्रेंथ, खुद के इमोशंस और खुद की वीकनेस को समझना, एनालाइज करना और उसके हिसाब से एक्शंस लेना। ऐसा करने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स को देखा जाए ना तो वो आधी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लें या प्रॉब्लम को देख लें कि आखिर कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। और इसी कारण से खुद को एक्सेप्ट करना और जो दुनिया आपको बताई जा रही है ये समझ लेना कि ये सच नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा।
0: तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ अच्छी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस हमें अवेयर होना है और खुद को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। अब हम युवाओं और मेंटल हेल्थ की और भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना आपकी लिस्ट में फर्स्ट रहना चाहिए।

0: दोस्तों, सॉन्ग्स या संगीत हम सभी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो, तो संगीत एक इमोशनल सपोर्ट बन सकता है। यह हमारे मूड को बेहतर बनाने, भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल टेंशन्स को कम करने और जुड़ाव का एहसास दिलाने में मदद कर सकता है। और इसी कारण से कई सारी रिसर्चेस में ये पाया गया कि संगीत सुनने का सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। संगीत हमें ये भी याद दिलाता है कि हम जो महसूस करते हैं वो अक्सर दूसरों के द्वारा भी साझा किया जा सकता है, भले ही वे जीवन के अलग-अलग अनुभवों और क्षणों में क्यों ना हो।
0: इमोशनल रिफ्लेक्शन और जुड़ाव को बढ़ावा देने की ये क्षमता ही वो कारण है कि संगीत को अब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक सहायक उपकरण के रूप में अध्ययन किया जाना है। ये चिकित्सा या दवा का विकल्प नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इमोशनल सपोर्ट और सामना करने में आपकी सहायता कर सकता है।
1: सिंपल वर्ड्स में अगर मार्गशीर्ष की बात को बताया जाए तो इसका मतलब है कि आजकल संगीत को क्लिनिकल हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ और मतलब हमारे सोच से संबंधित, हमारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी एन्जाइटी, इन सब को ईज आउट करने के लिए संगीत, अलग अलग फोक सॉन्ग्स, अलग अलग ट्यून्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्निकल डॉक्टर्स की तरफ से भी, ताकि वो माइंड को रिलैक्स कर सके। संगीत हमारे भाव और मन की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कई लोग संगीत को एक साधन के रूप में भी वर्णित करते हैं जो तनावपूर्ण स्थितियों में हमारे मूड को बेहतर कर सकता है।
0: संगीत और अवसाद पर किए गए शोध में भी ये अनुभव को बहुत ही प्रतिबिंबित होता है। ये संगीत का उपयोग चिकित्सा या अन्य मानसिक स्वास्थ्य सहायता के अतिरिक्त किया जाना है, और ये कुछ व्यक्तियों के मूड और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार भी कैसे ला पा रहा है, इसके ऊपर भी रिसर्चेस चल रही है। और कई सारे साइकैट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी म्यूजिक को रेकमेंड करते हैं जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। स्ट्रेस और टेंशन की स्थिति में संगीत का उपयोग अक्सर किया जाता है। अगर तुम सोचो, खुद ही सोचो मार्गेश, हाँ क्लिनिकली तो ठीक है, पर जब हम पर्सनली भी स्ट्रेस्ड फील होते हैं, करते हैं, हमें एन्जाइटी हो रही होती है, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, तो ऑफकोर्स हम फर्स्ट चीज़ बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, बट म्यूज़िक हमेशा हमारे दिमाग में रहता
0: सही
1: है
0: कहा। और
1: ना?
0: अगर आप बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं तो म्यूजिक सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि
1: आप
0: आप बैठ
1: सोचते
0: के
1: हो,
0: बस गाने सुनते
1: बिल्कुल
0: रहिए।
1: आप सोचते हो चलो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, कैसे करें, चलो गाने लगा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है जो सब करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई एकदम एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में है, जब वो समझ नहीं पा रहा, उसे पैनिक अटैक आ रहा है, उसको कुछ इस तरह का हो रहा है कि वो नहीं समझ सकता कि उसको क्या करना है, उस टाइम के लिए हमें ये याद रखना है कि हम बस किसी तरह का कोई भी गीत लगा लें।
0: गीत लगा लें या कुछ भी सूदिंग या रिलैक्सिंग म्यूजिक जो होता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, वो भी सुन सकते हैं।
1: विशेष रूप से शांत करने वाले गीत जो होते हैं ना, जो सोलफ्यूल, जो
0: जी
1: सोलफुल म्यूजिक होता है, जो आपके सोल को फ्यूल कर सके और सोल को फुल कर सके, तो ऐसी चीज़ों को सुने। इससे सांस लेने की गति धीमी होती है, मांसपेशियों यानी कि मसल्स में जो टेंशन होता है वो कम हो सकता है।
0: और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है आइडेंटिटी। जब भावनाओं को नाम देना या समझाना मुश्किल हो, तो संगीत उनके लिए एक जगह बना लेता है। कुछ लोग अपनी मनोदशा से मेल खाने वाले गाने सुनकर इसे व्यक्त करते हैं, और कुछ लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गायन या संगीत रचना का सहारा लेते हैं। तो आप कौन से व्यक्ति हैं? आप गाना सुनना पसंद करते हैं या लिखना पसंद करते हैं अपने इमोशंस को जाया करने के लिए?

0: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा।
1: तो अब समय आ गया है आप जो हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देने का। उम्मीद करते हैं कि आपने सही उत्तर गैस कर लिया होगा। पहला प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है। इसका उत्तर है रशिया।
0: और जो हमारा दूसरा सवाल था वो ये पूछता है कि भारत की राष्ट्र नदी कौन सी है, तो इसका जवाब है गंगा। तो इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी,
1: और मैं मार्गिशा, लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत। आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाजों में समीर का लिखा ये गीत फिल्म आंदोलन से।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं रघुवीर फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और साधना सरगम ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

0: शबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों।

0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छाओं में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है?

0: मास्टर जी।
1: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
2: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
0: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अप्पू,
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
0: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
0: वो
1: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
1: वो कांपते हुए बोला।
0: वो कंचा।
2: कंचा?
1: वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ।
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर

0: पूछे तो नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ,
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेल

0: कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आपको सुनवा रहे हैं आनंद कुमार के गाए कुछ भजन। तो लीजिए सुनिए ये पहला भजन।

अभी आपने सुने, आनंद कुमार की आवाज में कुछ भजन और गजल, सुगम संगीत अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिकों के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, लखपति दीदी योजना से लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण तक महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन शुरू होने से पहले हम बात करते हैं उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभान्वित शिवकुमार परमार कहते हैं कि
1: कुमार परमार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हमारे परिवार में नियमित रूप से निशुल्क राशन मिल रहा है। इससे हमारे घर का खर्च कम हुआ है और परिवार में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई है। कठिन समय में यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने पर पूनम सोनी ने बताया,
2: मेरा नाम पूनम सोनी है। पहले मैं हैंड पंप में पानी भरती थी, अब पानी मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल लखपति दीदी बनकर पार्वती प्रजापति बताती हैं कि
3: मेरा नाम पार्वती प्रजापति है, मैं ग्राम गिल्लोद की हूँ। मेरा समूह का नाम अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह है। मेरे समूह से जुड़ के मैंने शुरू में आरएफ लिया, उससे मैंने मुझे छोटा सा मेरे घर में ही पानीपुरी का, मेरे गांव में तो नहीं थी, मैंने पानीपुरी का बिजनेस शुरू हुआ छोटे स्तर पे। फिर मैंने सीआईएफ राशि ली तो उससे मैंने एक ठेला भी खरीदा और घर में पानीपुरी बनाती। 2,000 रूपए 2,500 की तक मुझे गांव में ही हो जाती है दिन की इनकम।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित पुष्पेंद्र राजपूत बताते हैं कि
4: मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राजपूत। मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक कृषक सम्मान निधि दिया जाता है, ये समय समय पर आता है और जो रुपए आता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा, उससे मैं कृषि के सामग्री, खाद, बीज इत्यादि को समय समय पर खरीदता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर से, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस योजना से शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाकर बिजली बचत के साथ साथ शून्य निवेश से बिजली की बचत का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत ग्वालियर के 30 शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने का अनुबंध हाल ही में प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा,
6: सरकारी छतों को एक साल के अंदर सोलराइज करने का मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के हमारे विभाग ने ये निर्णय लिया है कि एक वर्ष के अंदर हम पूरे मध्य प्रदेश में सोलर के द्वारा पूरी सरकारी छतों को सोलराइज करेंगे।
5: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक संयंत्र स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्वालियर जिले में अधिक से अधिक शासकीय भवनों पर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की बचत के लिए सोलर संयंत्र लगे, इसके सार्थक प्रयास किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: हमारी दूसरी खबर है देवास जिले से, जहां आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहां बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता नितिन गुप्ता।
7: मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयुष्मान भारत योजना का व्यापक विस्तार हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। देवास जिले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकायों के समन्वय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत जिले के शासकीय और संबद्ध निजी अस्पतालों में हृदय रोग, कैंसर, किडनी, न्यूरो सर्जरी सहित अनेक गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल के वर्षों में आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों से यह योजना जिले के हजारों परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता।
0: हमारी अगली खबर है हरदा जिले से, जहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरदा से हमारे संवाददाता लोमेश कौर।
8: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में बीते दिनों विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई तथा उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान कर विशेष उपचार व नियमित फॉलो अप लिया जा रहा है। शिविर में हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, मलेरिया, BDRL, सिकल सेल, HIV, हेपेटाइटिस व ब्लड ग्रुपिंग सहित अन्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हम चलते हैं धार जिले की तरफ, जहां जिले में लगभग 2.25 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
9: देश के अन्नदाताओं की आर्थिक दशा में सुधार और उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 वर्ष पूर्व शुरू की गई PM किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों पात्र किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों की जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले के पात्र किसान भी अछूते नहीं है। जिले के हर पात्र किसान को अब तक ₹44,000 का नगद लाभ प्राप्त हो चुका है। धार जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2.25 लाख से अधिक पात्र किसान हितग्राही हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान निधि की प्रथम किस्त किसानों के लिए जारी की गई थी। प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 की सम्मान निधि दी जाती है, जिसे हर वर्ष 3 समान किस्तों में किसानों के खातों में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक PM किसान सम्मान निधि की 22 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है। धार जिले में निवासरत 2,24,523 पात्र किसानों को 22 किस्तों में अब तक 987.90 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान निधि से नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीब किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली है और वह अपनी किसान सम्मान निधि का उपयोग फसल बोने के समय खाद, बीज, दवा के लिए कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: हमारी अगली खबर है डिंडोरी जिले से, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। पेश है डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया की रिपोर्ट।
10: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें 15,000 या उससे कम आय वाले 18 से 40 वर्ष के कामगार 55 से 200 रुपए के अंशदान से 60 वर्ष की आयु उपरांत 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

0: श्रम निरीक्षक नीरज टेकाम ने बताया कि डिंडोरी जिले में योजना को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है और विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। जिले को 1,15,054 पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है। योजना को लेकर ग्राम पंचायत स्तर में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल जिले में 484 हितग्राही का योजना के तहत पंजीयन किया जा चुका है। आगामी दिनों में पंजीयन में तेजी आने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवदिया।
1: अब हम रुख करते हैं नर्मदापुरम जिले की तरफ, जहां 7,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं डेयरी, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी आय बढ़ा रही हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी।
2: जिले में 7,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह सक्रिय हैं। अब तक हजारों महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए या उससे अधिक और मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए तक पहुंचाना है। जिले की माखनगर ब्लॉक के सांगाखेड़ा खुर्द गांव की निवासी किरण मेहरा ने राधे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जहां बेकरी व्यवसाय शुरू किया, वहीं बानाखेड़ा ब्लॉक की निवासी सुनीता कुशवाहा शारदा आजीविका समूह के माध्यम से किराना दुकान संचालित कर रही हैं। दोनों महिलाएं आज हर माह हजारों रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है गुना जिले से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
3: स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 5 जून से 12 जून तक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया,
4: गुना शहर को पहले से ही ODF +++ प्रमाण पत्र और 1 स्टार का दर्जा प्राप्त है और इस बार हम लोग 3 स्टार प्लस वाटर प्लस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान में निकाय के द्वारा जो सिटीजन फीडबैक किया जा रहा है, उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है दतिया जिले से, जहां प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना से लगभग 500 हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दतिया से हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी।
5: दतिया में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000, 25,000, 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दतिया नगर पालिका ने अपने ऑफिस से किला चौक मैदान पर और गरीब बस्तियों में शिविर लगाकर 800 के करीबन रजिस्ट्रेशन की है। अभी तक 500 हितग्राही इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस योजना में विशेष लाभ यह है, यदि डिजिटल माध्यम से ऋण को चुका दिया जाता है तो उसे 7% का ब्याज अनुदान भी मिलता है। इस योजना में रेड़ी पटरी विक्रेताओं को जोड़ने का विशेष कार्य किया जा रहा है। ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
9: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 से सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जानकारी के साथ ही आपको तनुजा चौबे का कहानी पाठ आशियाना सुनवाया जाएगा। इसके अलावा कुछ घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन की जानकारी के साथ ही होंगे कुछ लोकगीत। रात्रि 8 सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर, और 9:30 पर हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन जरूर सुनिएगा रात्रि 10:00, और शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग शिव केदार आज अपने गायन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे भुवनेश कोमकली। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सवेरे 6:35 पर खेती की बातें में आप जानेंगे बीज चयन, अंकुरण, परीक्षण और बीज उपचार के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। कल सवेरे 7:20 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल, 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा, और कल सवेरे 9:00 और शाम 6:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे रणजीत मालवीय के गाये लोकगीत। कल सवेरे 9:15 और शाम 6:30 पर सुनना ना भूलें सुगम संगीत, कलाकार होंगी श्रद्धा जगताप। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे बसवराज राजगुरु का शास्त्रीय गायन, राग होगा शुद्ध सारंग। 10:00 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का। सवेरे 11:00 हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे 12:00 फिल्म संगीत, 12:30 पर संग्रहालय से, और दिन में 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, जिसमें आपको स्टैंड अप इंडिया मिशन और मेरी उड़ान सेगमेंट के अंतर्गत योगा टीचर माया खिलवाड़िया से दीप लक्ष्मी की बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही मैंगो मलाई कुल्फी बनाने की विधि भी बताई जाएगी। दिन में 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत प्रसारित होगा। हमारी शाम की सभा में 5:00 सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, शाम 5:45 पर फिल्म संगीत, और शाम 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी में आयुष्मान भारत योजना की जानकारी दी जाएगी, और लोक संगीत के साथ ही ऋषभ जैन का कविता पाठ सुनवाया जाएगा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्र गीत। 9:30 पर हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से उर्दू कार्यक्रम कहकशा। कल रात्रि 10:00 का समय रहेगा मन भावन का, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रवीण जी का बांसुरी वादन, राग होगा पूरिया कल्याण। श्रोताओं, ये थी जानकारी कल के मुख्य कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं,
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज के सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉ. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा,
2: आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा।
0: इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इंदौर की सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला और बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित ये संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश भर को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमीटा घाट और अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने मां नर्मदा में स्नान कर वट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित विचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चयन ट्रायल आज समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बरगी थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण और वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शहडोल में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एग्जाम भी नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बहन हुन न साते च अपना सगला भाई उनके भारती की राम राम। बहन हुन बात करा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो यह योजना उन गरीब बहन हुन सारू है जो बहन हुन अपना घर माए खाना बनाने सारू सिगड़ी या चूल्हा को उपयोग करे हैं ने उको निकलने वालों धुओं अपने बहन हुन का साथे साथ अपना नाना नानी हुन के भी एको पूरो प्रभाव पड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा चालू करी गई इन्हीं योजना माए गरीब बहन हुन के मट्टी का चूल्हा से आज़ादी इन्हीं योजना को उपदेश योजे कि गांव माए रहने वाली गरीब बहन हुन के खानों बनाने माए चूल्हा की बजाय एलपीजी को उपयोग करने के बढ़ावा देनो है। साथेज बहन हुन की सेहत माए सुधार ने सशक्तिकरण के बढ़ावा देनो भी एको उद्देश्य है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस कसे मिले एका सारू आवेदन करनो घणो सरल छे। बस बेनहोन का पास बीपीएल मतलब वो गरीबी रेखा को जो कार्ड होवे नी वो होनो जरूरी है। कदि वो अपनी बेनहोन पास होवे तो इना आवेदन के भरीने पास का एलपीजी वितरण केंद्र में जमा करनो होएगो। दो पन्ना का इना आवेदन फार्म माए अपनी सगली जानकारी भरने के देनी है, जैसे कि नाम पतो आधार नंबर जनधन बैंक खाता नंबर सगली जानकारी भरीने एक है जमा करनो है। साथेज वी जो दस्तावेज मांगे नहीं उनकी भी फोटो कॉपी करवाने उनके देनी है। जब अपन यो आवेदन देने और दस्तावेज देने जब उनके जमा करी देवांगा तो वे उनके देखेगा कि हाँ ये सब जानकारी जो तुमने भरी है वह सही है, तो वो जो आवेदन है वो वे स्वीकृत करी लेगा और ओका बाद इन योजना को लाभ मिलने लगेगो। इन योजना को लाभ यो हुओ कि खाना बनाने में जो धुओं होवे नी ओको असर से बहुत सी बहनों के सांस में तकलीफ होती थी, साथे साथ कदी कदी उनकी मृत्यु भी हुई जाती थी। तो ओका से बचाव सारू भी यो जो योजना है इका में मृत्यु में कमी आई है। साथ ही बहनों का स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ जो बहनों झेलती थी वह भी अब झेलनी नहीं पड़े, साथ साथ प्रदूषण भी कम होने लगे है। तो इन्हीं योजना को लाभ लेने सारू अपनी बहनों एक आवेदन करी सके हैं। ने आज सोमवार को दन है तो अपन भोलेनाथ के मनावा ने सुना बहन रेखा सोलंकी को गायो यो लोकगीत।

अभी अपने बैंड रेखा सोलंकी को गायो यो लोकगीत सुनियो ने अब सुना कहानी आशियाना। एक एक कहानी के कैरी है बैंड तनुजा चौबे। तो सुना आशियाना कहानी।

रखा था। एक साथी तोते ने मुस्कुराकर पूछा, अरे विहंग, आज फिर इतनी दूर से रेशमी धागा ले आया? विहंग कुछ कह पाता उससे पहले उसकी प्रिया चहक उठी, हमारे आशियाना में जल्द ही नन्हे पंखों की फड़फड़ाहट गूंजने वाली है। ये धागे अंडों के लिए नरम और सुरक्षित बिछौना बनाने के काम आएंगे। फिर वह विहंग को निहारते हुए बोली, यह मुझे और हमारे आने वाले बच्चों को इतना प्यार करता है कि रोज दूर दूर से तिनके, रुई और रेशमी धागे जुटा कर लाता है। उन दोनों का प्रेम पूरे तोता समाज में प्रसिद्ध था। सभी पक्षी एक ही दिशा में उड़ते हुए उस विशाल बगीचे की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ उनके आशियाने थे। बगीचे में अनेक पुराने विशाल वृक्ष थे जिनकी शाखाओं पर असंख्य घोंसले बसे हुए थे। पास वाले वृक्ष पर मोर भानु अपनी पत्नी मोरी के साथ रहता था। आगे कोयल बहन, चिड़ैया रानी और अनेक पक्षियों के परिवार रहते थे। सबसे ऊंचे वृक्ष की मजबूत डाल पर जसविंदर बाज का बसेरा था। उसी वृक्ष के कोटर में उल्लू अंकल का आशियाना था। बगीचे के एक कोने में चौकीदार का छोटा सा कमरा था जिसकी छत पर कबूतर का बहुत बड़ा परिवार रहता था। सुबह होते ही वे समूह बनाकर उड़ते और सांझ ढलते अपनी छत पर लौट आते थे। सुबह सभी अपने भोजन और पानी की तलाश में निकल जाते, शाम को फिर इसी बगीचे में लौट आते। कुछ देर हरी घास पर टहलते, आपस में सुख दुख बांटते और फिर अपने अपने घोंसलों में विश्राम करने चले जाते। बगीचे में आने वाले लोग भी इन पक्षियों की चहचहाहट और कलरव से बहुत प्रसन्न थे। उस दिन सभी पक्षी अपने घर लौट रहे थे तभी मुख्य मार्ग की ओर मशीनों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। विहंग ने नीचे झांक कर देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। बड़ी बड़ी जेसीबी मकान को तोड़ रही थी, घरों की दीवारें भर भरा कर गिर रही थी, धूल के गुबार विशाल आसमान तक उठ रहे थे। लोग अपने सामान के सड़क के किनारे पर खड़े हुए थे, उनके चेहरों पर चिंता और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। विहंग और मंजरी घबरा कर तेजी से उड़ने लगे। यही वह पुराना मोहल्ला था जिसे पार करके वे बगीचे तक पहुंचते थे। सुबह सुबह पहले अधिकांश पक्षी इसी मोहल्ले में दाना पानी चुगने आते थे, इसलिए यह स्थान उन्हें बहुत प्रिय था। कुछ देर बाद वे बगीचे पहुँच गए। विहंग ने रेशमी धागों का गुच्छा सावधानी से घोंसले में लगा दिया। मंजरी को पंखों को सहलाते हुए बोला, तुम थक गई होगी ना, अब आराम करो, मैं सब व्यवस्थित कर देता हूँ ताकि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई असुविधा ना हो। रात की चांदनी उनके आशियाने पर बिखरी हुई थी। रेशमी धागों से सजा घोंसला किसी स्वर्गीय कुटिया जैसा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के पास सिमट कर सो गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने उन्हें जगाया। मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बच्चों के आने में अधिक समय नहीं है, हमें आशियाना थोड़ा मजबूत बनाना होगा। विहंग ने आश्वासन दिया, मैं और अच्छे धागे और नरम तिनके ढूंढ कर लाऊंगा। दोनों अपने साथियों के साथ फिर उसी मोहल्ले में उड़ चले। वहां पहुंचकर उसका मन बैठ गया। जिन घरों के आंगन में वो रोज दाना पानी चुगते थे वे आज मलबे में बदल चुके थे। टूटे हुए सकोरे, बिखरे हुए दाने, धूल में दबे आंगन देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उसी मोहल्ले में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे जिन्हें सभी पक्षी बहुत प्यार करते थे। बाबा हर सुबह पानी का सकोरा भर देते, उनकी पत्नी आंगन में दाने बिखेर देती। विहंग और मंजरी सबसे पहले वहीं पहुंचते, कभी नहाते, कभी दाना चुगते, कभी शरारते से दोनों का मन बहलाते। धीरे धीरे वे दोनों वृद्ध दंपत्ति की बातें समझने भी लगे थे। उन्हें पता चला था बाबा के दो बेटे हैं, दोनों का विवाह नई कॉलोनी में बस जाकर विवाह के बाद बस गए हैं। वे बहुत कम मिलने आते थे। बाबा की पत्नी अक्सर उनकी उपेक्षा से दुखी दिखाई देती थी, पर मन में बच्चों के लिए केवल प्रेम था। आज वही आंगन उजड़ा पड़ा था। बाबा और उनकी पत्नी सामान समेट रहे थे। दोनों बेटे भी आए हुए थे, वे मुआवजा मिलने से खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाबा की आंखों में नमी थी। बाबा अपनी पत्नी से कह रहे थे, सरकार ने नया घर दे दिया, मुआवजा भी अच्छा मिला है, लेकिन यह घर तो हमारे पूर्वजों की निशानी था। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, दुखी मत हो, इसी छोटे

से घर में हमने पूरा जीवन बिताया है, तुम्हारा साथ मिला है, बच्चे मिले हैं, यही हमारा संसार है। अब जो राम की इच्छा। विहंग और मंजरी बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि इंसान भी अपने घरों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना पक्षी अपने घोंसलों से। कुछ दिनों बाद संकट उनके अपने बगीचे तक पहुंच गया। एक सुबह जब वे लौट रहे थे, दूर से कटर मशीनों की भयावह आवाज़ सुनाई दी। बगीचे के बाहर वृक्ष काटे जा रहे थे, एक-एक करके विशाल वृक्ष धरती पर गिर रहे थे और उनके अनगिनत घोंसले भी मिट्टी में मिल रहे थे। डरे हुए पक्षी चीखते हुए आसमान में उड़ रहे थे। मंजरी भय से कांप उठी। वह घोंसले में दुबक गई। और क्या हमारा वृक्ष भी काट दिया जाएगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? विहंग ने उसे सांत्वना दी, पर उसके अपने हृदय में भी भय समा चुका था। यह घोंसला उसके पिता ने बनाया था, उसी के वृक्ष पर कई पीढ़ियां पली बढ़ी थी। पास के वृक्ष पर मंजरी का परिवार रहता था। उनके पूर्वज भले समय के साथ खो गए, पर उनकी स्मृतियों इन शाखा में अब भी जीवित थी। उस रात विहंग सो नहीं पाया। मंजरी भी अपने अंडों को लेकर चिंतित थी। सुबह उठते ही उसने पूरे बगीचे के पक्षियों को सभा बुलाई। मोर भानु, कोयल बहन, चिड़ैया रानी, जसविंदर बाज, उल्लू अंकल, अनेक पक्षी वहां एकत्रित हुए। तभी चौकीदार के कमरे की छत पर रहने वाले कबूतरों का विशाल झुंड भी फड़फड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा। उनके मुखिया रहीम कबूतर ने आगे बढ़कर कहा, विहंग भाई, आप अकेले नहीं हैं। यह केवल कोयलों, गोरैया या बाजों का प्रश्न नहीं है, हम सभी के आशियानों का प्रश्न है। हमारा कबूतर समाज बहुत बड़ा है। अरे, एक संदेश पर हजारों कबूतर आपके साथ खड़े हो सकते हैं। जब हमारे पूर्वज ने मानव सभ्यता के लिए आकाश नापा था, तो अपने आशियानों की रक्षा में हम कैसे पीछे रह सकते हैं? रहीम की बात सुनकर सभी पक्षियों में नया उत्साह भर गया। विहंग ने कहा, यदि हम चुप रहे तो हमारे घर उजड़ जाएंगे। हमें अपनी बात मनुष्य तक पहुंचानी होगी। सभी पक्षी सहमत हो गए। अगले दिन वह हजारों की संख्या में उड़कर प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और भवन के सामने बैठ गए। कर्मचारियों ने उन्हें भुगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिर अधिकारी ने विहंग को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? विहंग ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मान्यवर, मनुष्यों के घर उजड़ते हैं तो उन्हें मुआवजे के रूप में धन मिल जाता है, पर पक्षियों के लिए पैसों का कोई मूल्य नहीं होता। उनका संसार मुद्रा से नहीं, वृक्षों, घोंसलों, खुले आकाश और अपने परिवार से बना होता है। जिस आशियाने में उनकी पीढ़ियां पली बढ़ी हों, उसकी भरपाई कोई धनराशि नहीं कर सकती। आपने मोहल्ला उजाड़ा तो लोगों ने नया घर और मुआवजा मिल गया। वे दुखी अवश्य थे, पर उनके पास फिर से बसने का अवसर है। हमारे लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। हम ना नोटों का उपयोग कर सकते हैं, ना ही किसी कार्यालय में जाके अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा घर यदि टूट गया तो हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे पूर्वजों की स्मृतियों, हमारा पूरा संसार एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। हम प्रकृति के सेवक हैं। वृक्ष हमें आश्रय देता है। हम प्रकृति की सेवा करते हैं। हमारी चहचहाहट से सुबह जीवंत होती है। कोयल की कूक गीतों को जन्म देती है। मोर का नृत्य कलाकारों को प्रेरणा देता है। फिर उसने रहीम कबूतर की तरफ देखते हुए कहा, और इन कबूतर भाइयों को तो आप भली भांति जानते हैं। आज भले ही आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध हों, लेकिन एक ऐसा समय था जब संदेश पहुंचाने के लिए इन्हीं पूर्वजों पर भरोसा किया जाता था। उन्होंने राजाओं, सेनाओं, परिवारों के संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। युद्धों के अनेक पत्रवाहक कबूतरों ने दुश्मनों की गोलियां तक खाई, फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। मानव सभ्यता के संचार इतिहास में इनका योगदान अमूल्य है। जिन्होंने मानव समाज में इतनी सेवा की हो, क्या आज उनके आशियाने सुरक्षित रहने का अधिकार भी नहीं है? विहंग बोला,
हम बीजों को दूर दूर तक फैला

0: मिलाकर नए बीज उगाने में, वृक्ष उगाने में सहायता करते हैं। वृक्ष और हमारा संबंध जन्मों का है। वे हमें बिना किसी स्वार्थ के आश्रय देते हैं। हम उनके वंश को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। यदि वृक्ष कटेंगे तो हमारे घर नहीं उजड़ेंगे, बल्कि धरती की हरियाली, स्वच्छ हवा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, सब कुछ संकट में पड़ जाएगा। तभी जसविंदर बाज आगे बढ़ा और बोला, वृक्ष कटेंगे तो छाया समाप्त होगी, वर्षा का संतुलन बिगड़ेगा, जल स्रोत सूखेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। विकास आवश्यक है, लेकिन जीवन की कीमत पर नहीं। अधिकारी कुछ देर तक मौन बैठा रहा। पक्षियों की बातें हृदय को छू गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने मुझे ऐसा पक्ष दिखाया है जिस पर शायद हमने कभी विचार ही नहीं किया था। इस विषय पर मैं पुनः विचार करूंगा। अगली सुबह सूरज उगा। पूरे शहर में एक ही समाचार चर्चा का विषय था। अखबार की मुख्य खबर थी, प्रस्तावित सड़क का मार्ग बदला जाएगा। अब सड़क बगीचे के बीच में से नहीं, बल्कि उसके पीछे से निकाली जाएगी, जहां पहले से मार्ग उपलब्ध है।
1: बेनुन, अभी अपन ने तनुजा चौबे ने जो कहानी कही आशियाना वासुनी ने, घरेलू नुस्खा में आज जानांगा कि अपना जामुन खाना से कई कई फायदा होवे। जामुन देखना में कालो ने छोटो होवे है, पर आयुर्वेद में इमें नरा औषधीय गुण होवे है। गर्मी का मौसम में आम का आने का बाद जामुन भी आई जावे है। जामुन पूरो को पूरो, मतलब उसकी छाल, उसकी पत्ती, उसकी गुठली ने ओको गुदो सब उपयोग में आवे है। इका बीज, इकी पत्ती, छाल, अपन सभी इसका उपयोग में ली सका हाँ। जामुन को रस मुंह पे होने वाली फुंसी होने के रोके हैं। इकी पत्ती को रस भी फुंसी पे लगाई सका हाँ। जामुन की छाल एक अच्छी रक्त रोधक होवे है, जो कि खून के साफ करे हैं ने चमड़ी का रोग के दूर करे हैं। बच्चा होवे या बड़ा, कभी कभी आँख से संबंधित परेशानी हुई जावे है तो जामुन की कोमल 15 से 20 पत्ती के 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लेवा। जत पानी एक चौथाई री जावे उना पानी से आँख धोवा घणो आराम मिले है। जत आँख में मोतियाबिंद हुई जावे तो जामुन की गुठली के सुखाई ने पीसी लेवा ने शेद मिले ने उकी गोली बनाई ने राखी लेवा। रोज दन एक एक गोली सुबह शाम खावा। वो का से कहीं होवेगो कि जो मोतियाबिंद को असर है वो धीरे धीरे कम होते जावेगो। बहुत बार दांत दर्द होवे तो दांत का दर्द में जामुन की पत्ती के जले ने राख बनेला, उकी राख से दांत ने मसूड़ा पे मंजन जसो कर ही लेवा, तो धीरे धीरे दांत में जो दर्द हो रहा है वो खत्म होएगा और मसूड़ा को दर्द भी खत्म हो जाएगा। पथरी होने पे जामुन खाना पक्या हुआ, जामुन खाने से धीरे धीरे पथरी गली जावे है। शक्कर की बीमारी माय में जानू जामुन खानो घणो लाभकारी होवे है। और कभी कभी पेट में घनी परेशानी होवे है तो नीना पेट 4 से 5 जामुन खाना से पेट की संबंधी जितनी भी परेशानी होवे है वह दूर होवे है। ने अब सुनी लेवा सोयाबीन में सूखा प्रबंधन ने तकनीक की जो पद्धति है ओकी जानकारी जानकारी दे रिया है डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से। तो सुना यह वार्ता।
2: बहनों, आकाशवाणी इंदौर के इस कृषि कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, आज आपसे सोयाबीन में सूखा प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकों एवं पद्धतियों के बारे में चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा खरीफ 2026 के दौरान अलनीनो के प्रभाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। अलनीनो की स्थिति में सामान्य से कम वर्षा, वर्षा का असमान वितरण तथा लंबे शुष्क अंतराल देखने को मिल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों का सीधा प्रभाव सोयाबीन उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए इस वर्ष सूखा प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले बात करें खेत की तैयारी की, जो कि आप लोगों की तैयारी खेत की हो चुकी होगी। प्रत्येक 3 से 4 वर्ष में एक बार गहरी जुताई तथा 4 से 5 वर्ष में सब सॉइलर का उपयोग करने से वर्षा जल भूमि में अधिक मात्रा में संचित होता है, इससे फसल को लंबे समय तक नमी उपलब्ध रहती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पड़ता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। मृदा जनित रोगों के नियंत्रण हेतु ट्राइपोडर्मा 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 50 से 60 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग करें। बुआई के लिए ब्रॉड बेड फरो अर्थात बीबीएफ अथवा रेज्ड बेड फरो पद्धति को अपनाना चाहिए। इन पद्धतियों से वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होता है और कम वर्षा की स्थिति में फसल को अपेक्षाकृत अधिक नमी उपलब्ध रहती है। जैसा आप सभी जानते हैं, मध्य भारत में जून के अंतिम माह से जुलाई के प्रथम माह तक बुआई करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। मुख्यतः 100 मिलीमीटर वर्षा के उपरांत ही बोनी करना अनुशंसित है। अल नीनो जैसी परिस्थितियों में शीघ्र पकने वाली किस्मों का चयन विशेष रूप से लाभकारी रहता है। किसान भाई एनआरसी 150, एनआरसी 165, जेएस 2003, जेएस 2309, जेएस 2212 तथा जेएस 2216 जैसी 90 से 95 दिन में पकने वाली किस्मों को प्राथमिकता दे सकते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए AMS 100-39, MAUS 725, MAUS 612 किस्मों को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही केवल एक किस्म पर निर्भर रहने के बजाय 2 या 3 अलग अलग किस्मों की खेती करना जोखिम को कम करने का अच्छा उपाय है। साथ ही एक से अधिक फसल किस्मों की खेती भी लाभकारी हो सकती है। साथ ही अरहर के साथ 2 कतार अरहर और 6 कतार सोयाबीन की अंतर्वर्ती खेती अपनाएं। बीज उपचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशंसित फफूंदनाशी एवं कीटनाशी एजोस्ट्रोबिन 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल 11.5%, थायमिथोक्साम 25%, FS 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने के बाद हमारे संस्थान द्वारा तैयार सूक्ष्मजीवी कंसोर्शिया, जिसमें नमी तनाव सहनशील नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सोयाबीन राइजोबिया, जस्ता और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं को 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या अगर तरल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो 80 से 100 मिलीलीटर 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से बीज उपचार कर पौधों की जड़ों को मजबूत बनाती है तथा वे मृदा नमी तनाव को बेहतर ढंग से सहन कर पाते हैं। खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। खरपतवार मिट्टी की नमी एवं पोषक तत्वों के बड़े प्रतिस्पर्धी हैं, जिससे सूखे की स्थिति में फसल पर तनाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए फसल की प्रारंभिक 30 से 45 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना आवश्यक है। इससे उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग फसल द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए बुआई के तुरंत बाद तथा अंकुरण से पूर्व डाइक्लोसुलम 84% WDG का लगभग 12 ग्राम का जो पाउच आता है प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त नमी वाली मिट्टी में छिड़काव करने से खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। यदि बुआई के लगभग 1 माह बाद वर्षा रुक जाए तो खेत में डोरा या कुल्पा चला दें, जिससे डस्ट मल्च तैयार हो जाती है। इसके अलावा भूसा अथवा फसल अवशेषों के द्वारा भी मल्चिंग करने से मिट्टी में पानी का वाष्पीकरण कम होता है और नमी संरक्षण में सहायता मिलती है। सूखे की स्थिति में वैज्ञानिकों ने कुछ पर्ण छिड़कावों की भी अनुशंसा की है। थायो यूरिया जो कि 75 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़काव, यानी पहला 20 से 25 दिन और दूसरा 50 से 55 दिन के बाद, या बुआई के 30 से 35 दिन के बाद 2% पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव, या इसके अतिरिक्त सैलिसिलिक अम्ल का 100 मिलीग्राम सैलिसिलिक अम्ल को

0: 1 लीटर पानी में मिलाकर पुल आने से पहले अथवा पुल की स्थिति में जो कि 30 से 35 दिन बाद आती है, छिड़काव सूखा तनाव कम करने में सहायक पाया गया है। यदि 10 से 15 दिनों का सूखा काल फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं के साथ मेल खाता है जो तो जीवन संरक्षक सिंचाई अवश्य करें, विशेष रूप से बुआई के 15 से 20 दिन बाद या पूर्ण पुष्पन या फली भरने की अवस्था, ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इसमें दी गई सिंचाई उपज की हानि को कम करती है। अंत में मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि बदलती जलवायु और संभावित अल नीनो परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम समय पर बुआई, उपयुक्त किस्मों का चयन, जल संरक्षण, मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण, जैविक खादों का उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन संरक्षण सिंचाई जैसे उपाय अपनाएं, तो सोयाबीन की फसल को सूखे के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी अपन ने डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते से सोयाबीन में सूखा प्रबंधन हेतु तकनीकी और पद्धतियों की जानकारी सुनी। ने आज अपन बनावांगा मालपुआ। मालपुआ बनाने सारू अपना के 2 कटोरी आटो और ओ में अपना के बारीक जो रवा आए नी वो आधी कटोरी डाल नाकनो है। इन दोई के मिलाई के ओका बाद उसमें अपना के धीरे धीरे दूध नाकते जानो है और इना घोल के ना तो अपना के बहुत पतलो करनो है और न ही बहुत गाढ़ो रखनो है। एकदम असो न पतलो रहे न गाढ़ो रहे, असो होनो चाहिए को जो घोल है वो। ओका बाद इमें तम चाहो तो पीसी हुई सौंफ नाकी सकता हो और पीसी हुई इलायची, पर इलायची तो नाकनी है और सौंफ तो अगर तुम्हारे अच्छी लागे तो तुम नाकी सकता हो। एका बाद इना घोल के अपन रखी देवांगा और इसमें थोड़ो सो मोयन सारू अपन इसमें नाकांगा अपनो घी 2 चम्मच और चाहो तो इसमें थोड़ो सो मावो भी अपन नाकी सका, या तो मावो नाकी दो, थोड़ो सो घी तो नाकनो ही है 2 चम्मच, या फिर जो मलई अपनी आए नहीं ऊपर से अपन जब दूध गर्म करीने फ्रिज में रखी दे वहाँ तो ऊपर अच्छी गाढ़ी गाढ़ी मलई आ जाए तो वह भी अपन 2 चम्मच इसमें नाकी सका। एक अच्छे से मिलाई के और अपन साइड में के रखी देवा। अब अपन बनावांगा चाशनी। तो 2 जो कप है वह कप भरी ने अपना के शक्कर लेनी है और 1 कप पानी नहाके ने इसके चाशनी के 1 तारकी बनाई ने अलग ठंडी होने सारू राखी देनी है। अब जो तवई आई नहीं अपनी जलेबी की, जिसमें अपन जलेबी बनाए तवई ऐसी चपटी चपटी आवे हैं, वह तवई के अपना के गैस पर रखनी है और वो में अपना के शुद्ध घी नाकी ने ओ की तवई के आदि से ऊपर भरी देनी है। ओका बाद जब घी गर्म हो जावेगो तो 1 कड़छी लीने ओ में थोड़ो सो अपना के घोल नाकनो है तो वह घोल जो है फैली जावेगो और वो में जाली जाली पड़ी जाएगी। उसका बाद उसके अपना के वापस से पलटनो है। तो अपना देखो ये मालपुआ तो बनी गया। अच्छा, अब एक बाद अपना के उना मालपुआ के निकाली के चाशनी में नाकना है और चाशनी में अपना के उनके सिर्फ 10 मिनट सारू रखनो है। जब 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद मालपुआ निकाली ने ऊपर से चाहो तो ड्राई फ्रूट लग उसमें नहा के सकता हो पीसिया हुआ। तो ऐसे करी ने अपना के जितना अपन चाहवा उतना मालपुआ बने ने। देखो मालपुआ तैयार है और खाने सारू भी तैयार है। और अब सुनी लेवा बेन हेमलता उपाध्याय को गायो यो लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दोस्तों, हर प्रेम कहानी की शुरुआत एक मुलाकात से होती है। कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी सफर में, तो कभी यूं ही किसी की मुस्कान दिल चुरा लेती है। एक अजनबी सा चेहरा नजरों में उतर आया, जैसे किसी ख्वाब ने हकीकत का रूप पाया। वो मुस्कुराया तो मौसम भी बदलने लगे, सूखे हुए फूल भी जैसे महकने लगे। न जाने क्यों उस एक पल में ऐसा असर हुआ, दिल को पहली बार किसी से प्यार हुआ।

बातों बातों में कब ये दिल खो गया, हंसते हंसते किसी का हो गया। हर खुशी में उसका चेहरा नजर आने लगा, हर ख्याल उसी का नाम गुनगुनाने लगा। मोहब्बत शायद इसी एहसास का नाम है, जब कोई और नहीं बस एक ही शख्स खास है।

दिल की किताब का हर सफ़ा तेरा नाम कहता है, मेरी हर धड़कन तेरा पैगाम कहता है। बहुत रोका खुद को मगर ये दिल मानता नहीं, तेरे बिना अब कोई अरमान सजता नहीं। आज लबों से वो बात निकल ही जाए जो बरसों से दिल में छुपी है।

सुबह की पहली किरण में तेरा नूर लगता है, हर हंसी मंजर तुझसे भरपूर लगता है। तेरे साथ चलूं तो रास्ते आसान लगते हैं, बंद दरवाजे भी मेहरबान लगते हैं। मोहब्बत ने ये कैसा जादू कर दिया, हर दिन को जैसे त्योहार कर दिया।

कुछ लफ्ज़ अधूरे थे, कुछ बातें अधूरी थी, शायद हमारी खामोशियाँ ही ज़्यादा ज़रूरी थी। जो दिल के करीब था वही दूर हो गया, हँसता हुआ रिश्ता भी मजबूर हो गया। कभी कभी एक छोटी सी बात ऐसा असर कर जाती है कि बरसों की मोहब्बत भी बिखर जाती है। तेरे जाने के बाद ये दिल उदास रहता है, हर पल तेरा ही एहसास रहता है। भीड़ में भी तन्हाई का आलम मिलता है, हर चेहरे में तेरा ही चेहरा दिखता है। वक्त चलता रहा मगर जख्म भर ना सके, हम चाह कर भी तुझे भूल ना सके।

हर शाम तेरी यादों का मेला लगता है, दिल का आंगन फिर भी अकेला लगता है। उम्मीद का एक दिया अब भी जल रहा है, तेरा नाम लेकर ये दिल संभल रहा है। शायद किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो जाए, बिछड़ी हुई मोहब्बत फिर से मेरे साथ हो जाए।

किस्मत ने फिर एक नया मोड़ दिखाया, जिसे खो दिया था उसे ही सामने पाया। नजरों ने नजरों से कई बातें कह दी, बरसों की दूरियां एक पल में सहली। लग रहा था जैसे वक्त ठहर सा गया हो और अधूरा ख्वाब फिर से पूरा हो गया हो।

अब ना कोई शिकवा है ना कोई गिला है, मोहब्बत का कारवां फिर से चला है। जो बिखरा था कभी वो फिर संवर गया, सूना पड़ा दिल फिर से निखर गया। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत बात है, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सौगात है।

मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में एक दूसरे की खुशी चाहने का नाम है। दोस्तों, इन पंक्तियों के साथ ही अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त रूपाली चव्हाण को दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम खत्म करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवक

0: गमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: महिलाओं न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2020 में 1,46,000

0: किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership इंक

चित्रगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में झनक झनक पायल बाजे। इस फिल्म से हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, संगीत वसंत देसाई का।

अभी आपने सुना अनुपमा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में कैफी आज़मी का लिखा ये गीत। संगीत हेमंत कुमार का था। इस गीत के साथ ही चित्रगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रोग मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया। इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। आज अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी,
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है, कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे

0: क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो, कोई हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि शायद लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैर की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कार्य करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है। लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर दो घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
2: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
2: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
3: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
2: जी,
3: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
2: सभी के लिए।
3: हाँ, लेकिन जैसे ही हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
2: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
4: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
2: जी बताए।
3: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
2: जी,
3: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
2: जी।
3: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
2: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें मिशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
2: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
2: वो निकल जाती है,
1: वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
2: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
5: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
3: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें

0: आंखों को घुमाना वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
2: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
2: मेरा नाम नमस्कार है
1: जी। सवाल पूछिए।
2: शायद
1: में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
0: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है जी। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
3: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
3: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार
3: नमस्कार, मेरा पहला सवाल यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा है
1: जी,
3: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी। जी,
3: और योगा करने से वो ये होगा
4: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की दिनचर्या उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
0: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
0: प्राणायाम और आसन
1: जी।
0: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजेड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
0: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
5: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
1: जी, बताइए।
5: सर जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
0: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, सदैव स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि स्वास्थ्य, सॉरी कुछ
1: जी,
0: है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए, श्वास आप प्रतिपल लेते हैं उसी श्वास को

0: ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे सांस भरें और लंबे गहरे सांस छोड़ें। उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए, आपको लगता है कि सांस तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
0: देखिए, आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी।
0: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालने चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, रशीद जी।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री शुभकामनाएं। जी, सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिले कि ऐसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर, जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है, आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
0: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
0: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
0: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
0: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
1: जी,
3: पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत जल्दी करने जाते हैं, उनका फायदा नुकसान होता है
1: जी, जी, जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
3: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिसपे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटीज।

0: के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
1: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
2: बहुत अच्छा सवाल,
3: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मुंडोक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
2: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
0: नमस्कार,
4: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताइए। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें, और आसन ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी, खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
0: जी,
2: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें, ज्यादा लाभदायक रहेगा।
0: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी,
5: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
2: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे सारे विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जारी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
0: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या सवाल है आपका?
6: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
3: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
3: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
0: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
0: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsdetox@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गोरा और काला इस फिल्म के गीत के साथ। गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, पूजा, राखी, तृप्ति और मीनू, बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश निवृत्ति, सतीश सराफ, जगदीश, संजय चौहान और नगीन दास बैरागी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर डावर। इसी के साथ खरगोन से मनीष निमाड़े, शीतल, शुभांगी, अंश, अनुराग, दिव्यांश, राजेश और रीता पवार, वरवट बकाल से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे, खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष, मंदा, संदीप, माधुरी और पिंटू कुमार खंडाले। आप सभी की फरमाइश पर गोरा और काला फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में दो दिल फिल्म से कैफी आज़मी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। इस गीत को पसंद किया है राजपुर से सुनीता कानपुरे, हर्षिता, तानिया, कार्तिक, खुशी और कृष्णा कानपुरे ने। दरियापुर महाराष्ट्र से गजानन येले और नवदीप येले ने। अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर ने। खरगोन से ध्रुवास सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्ण और शुभम सोनवणे ने। सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप, मिलिंद, नेहा और उनके परिवार के सभी सदस्य। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद, जुनेद, अलीना, आयत और मुआज मंसूरी ने। मुसाखड़ी इंदौर से प्रकाश सेन, सुनीता, रवि और कृष्णा सेन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक और प्रतीक मल्होत्रा ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग ने। तो आप सभी की फरमाइश पर दो दिल फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन में अब आपको सुनवा रहे हैं दो बूंद पानी। इस फिल्म से मीनू पुरुषोत्तम और परवीन सुल्ताना की आवाज़ में कैफी आज़मी की रचना, जिसकी धुन बनाई है जयदेव ने। इस गीत को सुनना चाहा है पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना और जियांश मटाई ने। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया ने। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र और कुसुम नेताम ने। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। नंदानगर सुलगांव से नंदराम मंचारे, हरी, रिंकी, रेखा, रीना, वर्षा, राजकुमार और समस्त मंचारे परिवार ने। जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया ने और सालपुरा ज़िला बारों राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। इसी के साथ संस्कृति बाग इंदौर से इसे सुनना चाहा है बबलू, छाया, हर्ष, मिताक्षी और सोमती बाई ने। इसी गीत को पसंद किया है अन्नपूर्णा रोड अटल चौराहा इंदौर से सुरेश मंगवानी, गोपाल, लक्ष्मी, निर्मला, हेमंत, शोभा और समस्त मंगवानी परिवार ने। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनिए दो बूंद पानी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, मन भवन में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत चित्रगुप्त का है, फिल्म का नाम है ओपेरा हाउस। इस गीत को पसंद किया है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया और शोएब खान ने। अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर ने। वारणा, शाहपुर, कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान ने। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रुमेण ने। पलसिकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, अमिता, जिम्मी, दियाना और जियांश मटाई ने। चांदमारी इटभट्टा से राजेश चालसे, भारती, योगेश्वरी, याशिका और रुद्र चालसे ने। राजकुमार मिल चौराहा इंदौर से नितिन रायकवार, अमृता, कृष्णवी, महेश, अहिल्याबाई और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार ने। इसी गीत को सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान, इमरान, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज ने। साथ ही दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। इस गीत को सुनने के लिए सिमगा से हमें पत्र लिखा है रमेश कुमार, माया और रिंकू सन्नी कोमल यादव ने। मालीपुर बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, प्रियंका, पंकज।

सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, अंकित, सलोनी, लड्डू, अदव्या और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने टेमला मार्ग राजपुर जिला बड़वानी से इसी गीत को सुनना चाहा है। संतोष यादव, शिवराम, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदिनी, किरण, रेखा, लकी और सलोनी यादव ने। साथ ही महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आप सभी की फरमाइश पर ओपेरा हाउस फिल्म से ये गीत।

0: जाएं हम
1: दीवाने हो जाएं ना।
2: और श्रोताओं, अब वन भवन की अंतिम प्रस्तुति आन फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम, लता मंगेशकर साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी की रचना, जिसकी धुन बनाई नौशाद ने। इस गीत को पसंद किया है नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी और प्रांजल ने। बलिया से ओम प्रकाश, उषा और हैप्पी रॉय ने। उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, मयंक चेतन, दिलीप, दीक्षा, कुश और उनके सभी साथियों ने। बुरहानपुर से भैया तड़वी, रीना, सनी, रोजूबाई, परु, मुबारक, मनोहर और तैमूर बारेकर ने। खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजे ने। मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू और उनके सभी साथियों ने। रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद, राजू मिगलानी, सुभाष और बब्बू डब्बू ने। बेरडी से हुकुम कर मरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु ने। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू ने। मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका और गजानन घायल ने। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने। आप सभी की फरमाइश पर आन फिल्म से ये

इस गीत के साथ ही मन भावन कार्यक्रम खत्म करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त रूपाली चौहान को, इस वादे के साथ कि आप हमें यूं ही खत लिखते रहेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश कोमकली की का शास्त्रीय गायन राग शिव केदार में।

0: अभी आपने सुना भुवनेश कोमकली का शास्त्रीय गायन, राग था शिव केदार। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APG Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर इसी मीटर्स पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।